धुनी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

0: अद्य वयं गत्वा कृत्वा पठित्वा खादित्वा इत्येतान् शब्दान् शृण्मः, तेषाम् उपयोगं कृत्वा वाक्यानि वदामः। आज हम गत्वा श्रुत्वा पठित्वा ऐसे नए शब्द सुनेंगे, उनका उपयोग करना सीखेंगे। जैसे कि वाक्य होगा, बालकः विद्यालयं गत्वा पाठं पठति। इसका मतलब क्या है? लड़का विद्यालय जाके पढ़ाई करता है या पाठ पढ़ता है। बालकः विद्यालयं गत्वा पाठं पठति, इसका मतलब है लड़का विद्यालय जाके पाठ पढ़ता है। पिता कार्यालयं गत्वा कार्यं करोति। माता मंदिरं गत्वा देवदर्शनं करोति। माता क्या करती है? माताजी मंदिर जाके भगवान के दर्शन करती है। कैसा कहा? माता मंदिरं गत्वा देवदर्शनं करोति। तो गच्छति क्रियापद का त्वान्त रूप हुआ गत्वा। वैसे ही श्रुणोति का त्वान्त रूप होता है श्रुत्वा। खादति का होता है खादित्वा। किंचित अभ्यासं कुर्मः। श्रुण्वन्तु वदन्तु। गच्छति गत्वा, श्रुणोति श्रुत्वा, करोति कृत्वा, वदति उक्त्वा, पश्यति दृष्ट्वा, पिबति पीत्वा। वैसे ही खादति का रूप होता है खादित्वा, पठति पठित्वा। थोड़ा सा अलग है, मिलति मिलित्वा। तो अभ्यास करेंगे। शृण्वन्तु। बालकः पाठं पठित्वा गृहपाठं लिखित्वा फलं खादित्वा क्रीडांगणं गत्वा मित्रैः सह क्रीडति। कितना लंबा वाक्य हो गया ना? तो कैसा है, बालक क्या क्या करता है सुनिए। बालकः पाठं पठति, अनन्तरं गृहपाठं लिखति, अनन्तरं फलं खादति, अनन्तरं क्रीडांगणं गच्छति, अनन्तरं मित्रैः सह क्रीडति। बालकः पाठं पठित्वा गृहपाठं लिखित्वा फलं खादित्वा क्रीडांगणं गत्वा मित्रैः सह क्रीडित्वा गृहं आगच्छति। ये सब करके बालक घर आता है। एक वाक्य में हमने सब कुछ बोल दिया, मजा आता है ना? तो अब एक संभाषण सुनेंगे। एतत् अस्ति सखी संभाषणम्। पश्यामः, अत्र एका अस्ति नलिनी, एका अस्ति लता। लते, श्वः प्रातः शीघ्रम् आगच्छतु, मिलित्वा किञ्चित् लेखनं कुर्मः।
1: प्रातः कदा आगच्छामि?
0: नववादने आगच्छतु।
1: नववादने न शक्यते, दशवादनं तु भवेत् एव।
0: किमर्थं विलम्बं करोति? रामः तु अष्टवादने पाठशालां गच्छति, तस्य पिता अपि तदा एव कार्यालयं गच्छति।
1: आम् आम्, तत् सत्यम्, किन्तु ततः मम बहूनि कार्याणि भवन्ति। रामस्य गमनानन्तरम् अहं स्नानं कृत्वा, पूजां कृत्वा, समाचारपत्रिकां पठित्वा, अल्पाहारं खादित्वा, चायं कृत्वा, चायं पीत्वा, मन्दिरं गत्वा।
0: तत्र प्रसादं खादित्वा किञ्चित् जल्पनं कृत्वा मार्गे आपणं गत्वा लेखनीं क्रीत्वा लेखनार्थम् आगच्छामि इति एव खलु?
1: मम उपहासं करोति खलु भवती?
0: सखी, कोपः मास्तु, विनोदार्थं तथा उक्तं मया। आगच्छतु, दशवादने आगच्छतु, वयं मिलित्वा लेखनं कुर्मः। अस्तु, तर्हि संस्कृतभाषा पठनं कथं भवति? उत्तरम् अस्ति श्रुत्वा श्रुत्वा, उक्त्वा उक्त्वा। तर्हि संस्कृत प्रथमं संस्कृतं शृणोतु, अनन्तरं वदतु। संस्कृतपठनं भवति श्रुत्वा श्रुत्वा, उक्त्वा उक्त्वा, यानि सुन सुन के, बोल बोल के संस्कृत भाषा का अभ्यास होता है। बहुत खूब। आज का प्रश्न है, आपकी बेटी पाठशाला जाके क्या करती है? उत्तर जरूर भेजिए। आज मेरे साथ संभाषणार्थम संभाषण के लिए मेरी सहेली सुमेधा आसीत्। धन्यवाद भगिनी।
1: धन्यवाद।
0: इदानीं रामरक्षा स्तोत्र पठनम्। अस्मिन् सप्ताहे वयं श्रीरामरक्षास्तोत्रस्य श्लोकसङ्ख्या 16-22 श्लोकपर्यन्तं पठनं कुर्मः।
1: श्रीगणेशाय नमः।
2: श्रीगणेशाय नमः।
1: आरामः कल्पवृक्षाणाम्।
2: आरामः कल्पवृक्षाणाम्।
1: विरामः सकलापदाम्।
2: विरामः सकलापदाम्।
1: अभिरामः त्रिलोकानाम्।
2: अभिरामः त्रिलोकानाम्।
1: रामः श्रीमान् सनः प्रभुः।
2: रामः श्री

इस सप्ताह में श्लोक संख्या 16 से 22 तक हमने पढ़े हैं, तो पूरा सप्ताह यही श्लोक बोलेंगे, अगले सप्ताह में अगले श्लोक बोलेंगे। धन्यवाद। स्तोत्र पठनम सम्यक अभवत। आज आपने दो सखियों का संभाषण सुना, उसमें गत्वा कृत्वा पठित्वा लिखित्वा खादित्वा ऐसे नए शब्द थे। इनका प्रयोग करके आप लंबे लंबे वाक्य बना सकते हैं। अवश्यम प्रयत्नम कुर्वन्तु। श्वः वयं पुस्तकापणं गच्छामः, तत्र गत्वा किं संभाषणं तत्र चलति इति शृण्मः। इदानीं शान्तिमन्त्रः, अनन्तरं कार्यक्रमस्य समाप्तिः। दुर्जनः सज्जनो भूयात्।

0: भक्तिमय सकाळमध्ये पुन्हा एकदा स्वागत आहे. केली वेणू धोनी 90.4 FM वरती तुम्ही ट्युनिंग आहात आणि आपण आध्यात्मिक विचार ऐकू.
1: एक निष्ठता का महत्व. संबंध बनाना तो बड़ी सहज बात है, लेकिन उन्हें निभाना बड़ा मुश्किल. सचमुच अच्छे संबंध और वो भी सदाकाल बने रहे, ये एक चुनौती है और आज के युग में एक बड़ी घोर तपस्या. जब तक संबंधों में निष्ठा ना हो, तब तक उनकी नींव पक्की नहीं होती, समृद्ध और सुखी जीवन की इमारत नहीं बनती. सुखदायी और घनिष्ठ संबंध केवल एक निष्ठता से ही बनते हैं. सच पूछो तो एक निष्ठता संबंधों को आसमां की ऊंचाई दिलाने वाला एक अद्भुत गुण है. एक निष्ठता अर्थात एक के प्रति मन, वचन और कर्म.

से वफादार होना। जन्मदाता, आश्रयदाता, स्वामी, पालनकर्ता, रक्षक, कुटुंब, समाज या राष्ट्र के प्रति संकल्प, बोल और व्यवहार से ईमानदारी का पालन करना। उपकारकर्ता के उपकारों का एहसान मानकर तन मन धन से बदला चुकाना भी एक निष्ठता ही है। एक निष्ठ व्यक्ति संबंधों को अहम महत्व देता है। नुकसान व हानि को सहकर भी स्वामी के प्रति संपूर्ण समर्पणता युक्त व्यवहार करता है। वो सच्चाई का सामना करने का साहस रखता है। वो वास्तविकता से अपना मुख नहीं मोड़ता, लेकिन वचन पालन करने के लिए तत्पर होता है। ऐसे व्यक्ति के लिए हार, अपयश, हानि, ग्लानि कोई मायना नहीं रखती। वो हिमालय के समान अपने वचनों पर अटल होता है और वचन पालन करने में अपनी जान की बाजी लगाने में भी कमी नहीं करता। वो हार कर या प्राण त्याग कर भी एक निष्ठता के बल पर अमर हो जाता है। इतिहास में ऐसे एकनिष्ठ वीर पुरुषों का स्वर्ण अक्षरों से नाम लिखा जाता है। महावीर हनुमान श्री रामचंद्र के प्रति इतने एकनिष्ठ थे जो युगों युगों तक केवल अमर ही नहीं हुए, लेकिन एक निष्ठता के महान बल ने उन्हें पूजनीय बना दिया। अतः एक निष्ठता को अपनाए और समृद्ध व घनिष्ठ संबंधों से सुखी जीवन पाइए, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं।

0: भक्तिमय सकाळमध्ये आता मी निरोप घेणारे, पण जाण्यापूर्वी आजच्या पुण्यतिथी. ए के हनगल चित्रपट अभिनेते, स्वातंत्र्य सैनिक यांची आज पुण्यतिथी. नरेंद्रनाथ लॉन टेनिसपटू यांची पुण्यतिथी आजच. कृष्णाजी खाडिलकर नाटककार तसेच नवाकाळ वृत्तपत्राचे संस्थापक यांची पुण्यतिथी आजच्याच दिवशी. या होत्या आजच्या पुण्यतिथीने. यासोबत मनीषा निरोप घेते, उद्या पुन्हा येईनच, पण तोपर्यंत तुम्ही ऐकत रहा गणधोनी 90.4 FM KLE कणसू. नमस्कार.
1: ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬೆಳಗಿನ ಶುಭೋದಯಗಳು. ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಸಮುದಾಯ ಬಾನುಲಿ ಕೇಂದ್ರ, ಇದು ಕೆಎಲ್ಇ ವೇಣುಧ್ವನಿ 90.4 FM. ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ. ಇಂದು ನಮ್ಮ ನಿಲಯದಿಂದ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವಿವರ ಹೀಗಿದೆ. ಮುಂಜಾನೆ 8 ಗಂಟೆಯಿಂದ 8:15 ವಾರ್ತೆಗಳು, ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 8:15 8:30 ಕೆಎಲ್ಇ ಆಯುರ್ವೇದ ಹೆಲ್ತ್ ಗೈಡ್ ಸರಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, 8:30 9:00 ಕೆಎಲ್ಇ ಔಷಧೀಯ ಜ್ಞಾನ ಸರಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, 9:00 to 9:30 ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, 9:30 to 10:00 ಕೆಎಲ್ಇ ಕೃಷಿ ಮಿತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, 10:00 to 12:00 ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಗೀತೆಗಳ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ, 12:00 to 12:30 ಕನ್ನಡ ಜನಪದ ಗೀತೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜನಪದ ಸಿರಿ, 12:30 to 1:00 ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿದೆ. ಗೀತ ಸಂಗಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 1:00 to 1:30 ಕೆಎಲ್ಇ ಚಿತ್ರಮಾಲಾ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಗೀತೆಗಳು, 1:30 to 2:00 ಮಹಿಳಾ ಜಗತ್ತು ಮರಾಠಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, 2:00 to 2:15 ವಾರ್ತೆಗಳು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, 2:15 to 4:00 ಕೆಎಲ್ಇ ಸಂಗೀತ ಕಟ್ಟ ಮರಾಠಿ ಚಿತ್ರಗೀತೆಗಳ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ, 4:00 to 4:30 ಭಾಷಾ ಸಂಗಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, 4:30 to 5:00 ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿದೆ. ಸಂಧ್ಯಾ ಸಮಯ 5:00 to 7:35 ಕೆಎಲ್ಇ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಯೂನಿಂಗ್ ಹಿಂದಿಯ ಚಿತ್ರಗೀತೆಗಳ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ, 7:35 to 7:45 ವಾರ್ತೆಗಳು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, 7:45 to 8:00 ಕೆಎಲ್ಇ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಯೂನಿಂಗ್ ಹಿಂದಿಯ ಚಿತ್ರಗೀತೆಗಳ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮುಂದುವರಿಯುವುದು. 8:00 to 8:15 ಕೆಎಲ್ಇ ಕೃಷಿ ಮಿತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, 8:15 to 9:00 ನಮ್ಮ ನಿಲಯದ ಇಂದಿನ ಕೊನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾದ ಮೆಲ್ಲುಸಿರೆ ಸವಿಗಾನ ಹಳೆಯ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಗೀತೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತದೆ.
0: ವೇಣುಧ್ವನಿ 90.4 FM KLE ಕನಸು ಪೆ ಆಪ್ ಟ್ಯೂನ್ ಹೈ ಔರ್ ಅಭಿ ಹಮ್ ಸುನೆಂಗೆ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೇಡಿಯೋ ಕೆ ಸಹಯೋಗ ಸೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೋನೆ ವಾಲೆ ನ್ಯೂಸ್.
2: ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕಿ 53ವೀ ಬೈಠಕ್ ಕಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತಾ ಕಿ ಏಕ್ ರಿಪೋರ್ಟ್.
3: प्रधानमंत्री ने कहा कि बड़ी परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाते समय बिजली, पानी और अन्य सेवाओं के लिए साझा गलियारे विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए. बैठक में 9 राज्यों से जुड़ी हुई रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई. इनकी कुल लागत 30,000 करोड़ रुपए से अधिक है. श्री मोदी ने किसानों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए कृषि क्षेत्र के डिजिटल डेटा प्लेटफॉर्म एग्रीस्टैक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीक के बेहतर उपयोग का सुझाव दिया. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साइबर धोखाधड़ी और डिजिटल अरेस्ट के मामलों पर जागरूकता अभियान, प्रशिक्षण और सुरक्षित डिजिटल व्यवहार को बढ़ावा दिया जाए. प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती.
4: गृह मंत्री अमित शाह ने अगले एक वर्ष में 3 नए आपराधिक कानून देश भर में पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा है. नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन के समापन सत्र में उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए मजबूत आंतरिक सुरक्षा बेहद जरूरी है.
5: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए भारत को आंतरिक सुरक्षा और मजबूत करनी होगी. उन्होंने बताया कि मादक पदार्थ, नक्सलवाद और पूर्वोत्तर की सुरक्षा चुनौतियों पर सरकार ने प्रभावी कार्रवाई की है. उन्होंने कहा कि अगले 15 से 20 वर्षों की संभावित चुनौतियों की पहचान कर उन्हें समय रहते रोकने की रणनीति बनाई जानी चाहिए. गृह मंत्री ने राज्यों से नशे के खिलाफ अभियान तेज करने और सुरक्षा के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर बल देते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य सुरक्षित, घुसपैठ मुक्त और नशा मुक्त भारत बनाना है. अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा.
4: गृह मंत्रालय ने केरल का आधिकारिक नाम बदलकर केरलम कर दिया है। ये बदलाव 25 अगस्त से लागू हो गया है। केरल का नाम बदलने से संबंधित विधेयक 11 अगस्त को लोकसभा और अगले दिन राज्यसभा में पारित हुआ था। इस महीने की शुरुआत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विधेयक को मंजूरी दी थी। इसके बाद इसे कानून का रूप मिल गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्य वर्धन करना है। भारतीय नौसेना निस्तार श्रेणी के दूसरे गोताखोर सहायता पोत निपुण को 31 अगस्त को मुंबई में डॉकयार्ड में शामिल करेगी। स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित ये पोत भारत की रक्षा जहाज निर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका निर्माण विशाखापट्टनम के हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। ये पोत पनडुब्बी बचाव अभियानों में भी नौसेना की क्षमता को मजबूत करेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार आज लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 4000 पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपेगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
6: अब तक 9,13,000 से अधिक महिलाओं ने इस योजना के लिए पंजीकरण कराया है और 6,52,000 से अधिक आवेदन अंतिम रूप से जमा किए जा चुके हैं। दिल्ली सरकार ने कहा कि वित्तीय सहायता अगले महीने की पहली तारीख से सीधे महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जाएगी। दिल्ली के वर्ष 2026-27 के बजट में इस योजना के लिए 5,110 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। दिल्ली सरकार ने सभी पात्र महिलाओं से समय पर अपना ऑनलाइन पंजीकरण पूरा करने का भी आग्रह किया है। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: इस बीच दिल्ली सरकार ने स्पष्ट किया है कि राजधानी में प्याज और चीनी की कोई कमी नहीं है। सरकार ने कहा है कि कीमतें बढ़ने पर नेफेड से प्याज और चीनी खरीद कर लोगों को उचित दरों पर उपलब्ध कराई जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय केंद्र सरकार की याचिका पर सुनवाई के लिए एक विशेष पीठ गठित करने के विचार पर सहमत हो गया है। केंद्र सरकार ने याचिका में सिविल सेवा परीक्षा 2025 के अन्य पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर से जुड़े उम्मीदवारों पर न्यायालय के 11 मार्च के फैसले पर स्पष्टीकरण मांगा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधारों को लेकर संसदीय समिति ने मसौदा रिपोर्ट को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है। समिति ने एजेंसी को वैधानिक दर्जा देने समेत इसमें सुधार और मजबूत बनाने से जुड़ी सिफारिशों पर सहमति व्यक्त की। कांग्रेस सांसद मुकुल वासनिक की अध्यक्षता वाली समिति की ये छठी बैठक थी। ई श्रम पोर्टल के को आज 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये भारत के असंगठित कार्यबल के लिए सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 2021 में इस पोर्टल को शुरू किया था। इसके माध्यम से देश का पहला आधार आधारित राष्ट्रीय असंगठित श्रमिक डेटाबेस तैयार किया गया है। सरकार अखिल भारतीय निगरानी नेटवर्क के माध्यम से देश भर में प्रचलित मौसमी श्वसन संबंधी बीमारियों के रुझानों पर कड़ी नजर रख रही है। नई दिल्ली में स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ. राजीव बहल ने मीडिया को बताया कि देश में वर्तमान में फैल रहा इन्फ्लुएंजा वायरस पिछले कुछ वर्षों में देखे गए मौसमी पैटर्न के अनुरूप है। वर्तमान अवलोकन किसी नए इन्फ्लुएंजा खतरे के उभरने का संकेत नहीं देते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 25 अगस्त से 2 सितंबर तक कनाडा और अमेरिका की 9 दिन की यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करना है। कनाडा की 4 दिन की यात्रा के दौरान श्रीमती सीतारामन वहां के वित्त मंत्री फ्रांसवा फिलिप शॉपिने के साथ पहली आर्थिक और वित्तीय वार्ता में हिस्सा लेंगी। अमरीका में वित्त मंत्री शिकागो एशविल और न्यूयॉर्क का दौरा करेंगी। भारत और चीन ने सीमा मुद्दे के राजनीतिक समाधान की दिशा में काम जारी रखने पर सहमति व्यक्त की है। साथ ही सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों देशों ने कहा है कि इससे द्विपक्षीय संबंधों के विकास और प्रगति को बढ़ावा मिलेगा।
7: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कल पेचिंग में भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वीं दौर की वार्ता की सह अध्यक्षता की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों के बीच सीमा विवाद पर विस्तार से चर्चा हुई। दोनों देशों ने अक्टूबर 2024 में कजान और पिछले साल अगस्त में तियाजिन में बनी सहमति को लागू करने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। दोनों पक्षों ने कैलाश मानसरोवर यात्रा और 3 निर्धारित सीमा व्यापार मार्गों से सीमा व्यापार समेत लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने का भी स्वागत किया। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं विकास नापा।
8: भारत और न्यूजीलैंड ने हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, खुला और समावेशी बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई है। दोनों देशों के बीच दूसरी रक्षा रणनीतिक वार्ता कल न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में हुई। वार्ता में समुद्री सुरक्षा, संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण और रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने और 2030 के रोड मैप के लक्ष्यों को पूरा करने पर विचार किया। भारत और मोरक्को ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने, निवेश में वृद्धि करने और औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये भारत और मोरक्को के बीच साझेदारी को अधिक मजबूत तथा गतिशील बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। कनाडा ने अमेरिका के साथ बढ़ते व्यापार विवाद के बीच 27 अरब 60 करोड़ डॉलर के अमेरिकी सामान पर 50% तक जवाबी शुल्क लगाने का फैसला किया है। ये जवाबी शुल्क 8 सितंबर से लागू होंगे। गोवा के परनेम स्थित पत्रा देवी शहीद स्मारक का आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अनावरण करेंगे। ये स्मारक गोवा के मुक्ति संग्राम में बलिदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति और उनके योगदान को समर्पित है।
9: मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने कहा कि यह स्मारक उन 31 सत्याग्रहियों की याद में बनाया गया है जिन्होंने 1955 में गोवा को भारत में शामिल करने की मांग को लेकर सत्याग्रह किया था। गोवा में प्रवेश की कोशिश के दौरान पुर्तगाली सैनिकों की गोलीबारी में उन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। स्मारक परिसर में शहीदों की याद में मूर्तियां और अलग अलग संरचनाएं बनाए गए हैं। पत्रा देवी शहीद स्मारक शहीदों को श्रद्धांजलि देने, इतिहास को समझने और आने वाली पीढ़ियों को गोवा के मुक्ति संग्राम से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनने की उम्मीद है। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
8: पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद ए मिलाद उन नबी आज देश के विभिन्न हिस्सों में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर अलग अलग जगहों पर पैगंबर मोहम्मद के जीवन और शिक्षाओं पर मिलाद महफिलें और सीरत सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। उधर केरलवासी ओणम का सबसे शुभ दिन तिरुओणम मना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों को ओणम के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करते हुए कहा कि खुशियों और उल्लास का ये रंगारंग त्योहार पूरी दुनिया में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। प्रधानमंत्री ने ईद ए मिलाद उन नबी की भी शुभकामनाएं दी हैं। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, झारखंड, केरलम और माहे में तेज वर्षा का अनुमान लगाया है। मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी दिन के दौरान तेज वर्षा की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में सक्रिय मॉनसून के बीच आज सुबह राज्य में भूकंप के झटके महसूस किए गए। शिमला में सुबह करीब 5:46 पर हल्के झटके आए जो कुछ सेकंड्स तक चले। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.0 मापी गई। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड शतरंज टूर के फाइनल्स के खिताबी मुकाबले में जगह बना ली है। प्रज्ञानंदा ने सेमीफाइनल में जर्मनी के विंसेंट कीमर को 19-9 से हराया। फाइनल मैच प्रज्ञानंदा और मौजूदा चैंपियन फेबियानो कारुआना के बीच खेला जाएगा। शीर्ष 3 स्थान हासिल करने वाले खिलाड़ी अगले साल के ग्रैंड चेस टूर के लिए सीधे क्वालिफाई करेंगे। भारत के साथ दूसरे और आखिरी क्रिकेट टेस्ट के चौथे दिन आज श्रीलंका 8 विकेट पर 265 रन से आगे खेलेगा। श्रीलंका पहली पारी में भारत से 238 रन से पीछे है। भारतीय टीम ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की थी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
10: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। हिंदुस्तान की खबर है, देश में अब निजी कंपनियां भी मिसाइल का निर्माण कर सकेंगी। डीआरडीओ की तकनीक निजी क्षेत्र को हस्तांतरित करने की मंजूरी। अमर उजाला लिखता है, सरकार देगी तकनीक, निजी कंपनियां बनाएंगी मिसाइलें। इस फैसले से देश में ही मिसाइलों का बड़े पैमाने पर उत्पादन हो सकेगा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, H1N1 संक्रमण के मामले बढ़े, स्कूलों को दी हिदायत। दैनिक जागरण की सुर्खी है, सीमा विवाद का समाधान तलाशने पर भारत चीन सहमत। NSA अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी की अगुवाई में हुई विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता। जनसत्ता ने सर्वोच्च न्यायालय का कथन दिया है, वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में चढ़ावा चोरी नहीं होने देंगे। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, यूपी में बुजुर्ग महिलाओं को बसों में मुफ्त सफर। स्कॉलरशिप से वंचित स्टूडेंट्स के लिए फिर खुलेगा पोर्टल, मेडिकल क्षेत्र में भी भत्ता बढ़ा। पंजाब केसरी ने 48 साल पहले की खौफनाक घटना को याद किया है, गीता और संजय के हत्यारे रंगा बिल्ला को आज भी नहीं भूली दिल्ली। 26 अगस्त 1978 को मासूम भाई बहन का अपहरण कर दोनों की हत्या कर दी गई थी। कल हुई मूसलाधार वर्षा पर दैनिक भास्कर ने लिखा है, थम गई दिल्ली, गुरुग्राम में सड़कें धंसी, हाईवे पर गहरा गड्ढा, NCR में जलभराव से लगा जाम।
11: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति बैठक में 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। गृह मंत्री अमित शाह ने अगले एक वर्ष में 3 नए आपराधिक कानून पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा। दिल्ली सरकार आज लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 4,000 पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपेगी। भारत और चीन ने सीमा विवाद के राजनीतिक समाधान की दिशा में काम जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। और दुनिया भर में ईद ए मिलाद उन नबी की रौनक, केरलम वासी मना रहे ओणम का सबसे शुभ दिन तिर ओणम। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
12: और अब तक हम सुन रहे थे ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से प्रस्तुत होने वाले न्यूज। आप सुनते रहे वेणुधोनी 90.4 FM KLE कनसु।
13: ಬೆಳಗಾವಿಯ KLE ಆಯುರ್ವೇದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯು ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದೆ.
14: ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಲು ಅವಶ್ಯವಾದ ನುರಿತ ತಜ್ಞರಿಂದ ತಪಾಸಣೆ, ವರ ಹಾಗೂ ಒಳರೋಗಿ ವಿಭಾಗ ಅನುಭವಿ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯರಿಂದ ಹೊಂದಿದೆ.
13: KLE ಆಯುರ್ವೇದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮುಖ್ಯ ಧ್ಯೇಯ ರೋಗ ನಿವಾರಣೆ, ಆರೋಗ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ.
14: ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ
13: KLE ಆಯುರ್ವೇದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಶಹಾಪುರ, ಬೆಳಗಾವಿ. ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 0831-24-86-286.
15: ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ. ಬೆಳಗಾವಿಯ KLE ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಾಹೇರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ನಿಂದ ಆಸಕ್ತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ. ಭವಿಷ್ಯದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ನಾಯಕರಾಗಲು ನಮ್ಮ ಸಂಯೋಜಿತ BPH ಮತ್ತು MPH 5 ವರ್ಷಗಳ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಇಂದೇ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿ. ಅರ್ಹತೆಗಳು ಸೈನ್ಸ್, ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ PUC ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದವರು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದವರಿಗೆ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ 2ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಯಾವುದೇ ಪದವಿ ಮುಗಿಸಿದವರು 2 ವರ್ಷಗಳ MPH ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸೇರಬಹುದು. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಮುಖ ವಿಶೇಷತೆಗಳು, NAC A+ ಗ್ರೇಡ್, ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳು, ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪರಿಣಿತ ಬೋಧಕರಿಂದ ನೇರ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ. ಕಾಹೇರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಡೆಮೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಸರ್ವೆಲೆನ್ಸ್ ಸೈಟ್ HDSS ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅನುಭವ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ, ಅಮೆರಿಕದ ಥಾಮಸ್ ಜೆಫರ್ಸನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸ್ವೀಡನ್ USA, ಯುಮಿಯಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸ್ವೀಡನ್ PHFI, ಕ್ಯಾಂಪಲ್ ಸೌತ್ ಏಷ್ಯಾ ಮುಂತಾದ ಜಾಗತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಡಂಬಿಕೆ. NIH, ICMR ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ

0: नमस्कार, आप सुन रहे वेणुधोनी 90.4 एफएम केएलई कनसू। आज के इस विशेष प्रोग्राम में मनीष आपका स्वागत करती है। आज है ईद मिलाद, इसी के अवसर पे आज हम सुनेंगे क्रांति के मशाल वाहक पैगंबर हजरत मोहम्मद, इनके बारे में। और ये जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में है शाहिद मेमन जी, जो जमात इस्लामी हिंद कर्नाटका के सदस्य और राज्य सलाहकार परिषद है। तो चलिए सुनते इस विशेष प्रोग्राम को। आप सुनते रहे वेणुधोनी 90.4 एफएम केएलई कनसू।
1: पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्मदिन के शुभ अवसर पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 1450 वर्ष पहले पैगंबर इस दुनिया में आए, ईश्वर के आखिरी दूत बनकर, सारे इंसानों के मार्गदर्शक बनकर। सारी मानव जाति पर आपके बड़े उपकार और एहसान है। पवित्र कुरान के माध्यम से आपने सारी दुनिया को एक ईश्वर एक मानवता का संदेश दिया। पवित्र कुरान ईश्वर का भेजा हुआ वो संदेश है, जिसके द्वारा पैगंबर मोहम्मद ने मानव जीवन में एक ऐसी क्रांति लाई जिसका उदाहरण संपूर्ण मानव इतिहास में नहीं मिलता। पैगंबर की लाई हुई क्रांति एक ईश्वर की उपासना, उसके आगे समर्पित होना और ये एहसास और ये चेतना कि एक दिन हम सबको अपने प्रभु के आगे अपने कर्मों का हिसाब देना है, इस पर आधारित थी। इसकी शुरुआत व्यक्ति को भीतर से बदलने से हुई और बदले हुए व्यक्ति के माध्यम से इस क्रांति ने पूरे समाज को बदल दिया। ये क्रांति नफरत और बदले की भावना पर आधारित नहीं थी, बल्कि सत्य और न्याय, दया और करुणा, क्षमा और त्याग और मानव गरिमा पर खड़ी हुई थी। इतिहास इस बात का साक्षी है कि हर युग में और हर सभ्यता में जो शासक वर्ग होता था, जिनके हाथों में शासन और सत्ता था, जो धनवान और जमींदार लोग थे और धर्म अधिकारी थे, इनका आपस में गठजोड़ बना हुआ था। अंधविश्वास, अंधश्रद्धा को धार्मिक मान्यता दी गई थी, ऊंच नीच और जाति परंपरा को धर्म का रूप दिया गया था, रीति रिवाज और कर्म कांड तक धर्म सीमित होकर रह गया था, अन्याय, अत्याचार और भेदभाव एक आम बात थी और एक आम इंसान जैसे गुलाम बनाकर रख दिया गया था। ऐसा ही कुछ हालात थे जिसमें पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक क्रांतिकारी संदेश दिया। अल्लाह के सिवा कोई और ईश्वर नहीं है, वो अकेला इस जगत का मालिक, शासक और सृष्टिकर्ता है। ये सरल किंतु गहरी घोषणा रखने वाला संदेश था जिसने इतिहास को बदल दिया। इसने स्पष्ट कर दिया कि कोई राजा या शासक कितना ही बड़ा क्यों न हो, पूज्य के लायक नहीं है। कोई जाति या वर्ग दूसरे से श्रेष्ठ नहीं है। कोई इंसान कितना ही महान क्यों न हो, पूजा का योग्य नहीं है। सारे इंसान ईश्वर के आगे सम्मान है। इस घोषणा ने शोषण और अत्याचार की बुनियादों को हिला दिया, क्योंकि जो इंसान सृष्टिकर्ता के आगे झुकता है ना, वही वास्तव में उसकी सृष्टि के गुलामी से मुक्त हो जाता है। पैगंबर की लाई हुई ये क्रांति केवल शिक्षाओं और सिद्धांतों तक सीमित नहीं थी। पैगंबर मोहम्मद ने 23 वर्ष के छोटे से समय में एक नया समाज, एक नई सभ्यता, एक नई संस्कृति, एक नई दुनिया का निर्माण किया। पैगंबर ने जो क्रांति लाई उसने मानव जीवन के हर क्षेत्र को बदल दिया। आध्यात्मिकता और नैतिकता से लेकर परिवार का जीवन, सामाजिक पद्धति, कानून, अर्थव्यवस्था, शासन, सत्ता और न्याय, सब कुछ बदल दिया। देखते ही देखते सत्य और न्याय की स्थापना हुई, मानव की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति हुई, दया और करुणा का चलन हुआ, प्रेम और भाईचारा पनपा और फूला, मानव सम्मानता, अमन और शांति का वातावरण बना, मानव जीवन में जैसे बहार आई। आज मैं आपके सामने औरत के, नारी जाति के संबंधित जो पैगंबर की शिक्षा है, उसकी कुछ झलकियां रखना चाहूँगा। विशेष रूप से आज के संदर्भ में जब नारी जाति पर जुल्म और अत्याचार हो रहा है, चाहे वो एप्स्टीन फाइल्स का कांड हो, मी टू मूवमेंट हो, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्कप्लेस के रिपोर्ट्स हो, या फिर $100 बिलियन की पोर्नोग्राफी इंडस्ट्री हो, पैगंबर की शिक्षा बड़ी महत्वपूर्ण है। 1400 वर्ष पहले जबकि हर जगह महिलाओं को गरिमा, सुरक्षा और मूलभूत 1400 वर्ष पहले जबकि हर जगह महिलाओं को गरिमा, सुरक्षा और मूलभूत अधिकारों से वंचित रख दिया गया था। पैगंबर मोहम्मद ने एक ऐसी नैतिक और सामाजिक क्रांति लाई जिसने 7वीं शताब्दी में महिलाओं की स्थिति को कुछ ऐसे बदल दिया जिसकी हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते। पैगंबर मोहम्मद ने कहा, ईश्वर की दृष्टि में पुरुष और स्त्री दोनों समान हैं। अच्छे कर्मों का बदला दोनों को मिलेगा। आदर और सम्मान लिंग, जाति, धन दौलत के आधार पर नहीं बल्कि सदाचार और अच्छे चरित्र पर निर्भर है। महिलाएं केवल माँ, पत्नी और बेटियां ही नहीं हैं, ये परिवार, समाज और राष्ट्र की उन्नति में सम्मान की भागीदार हैं और योगदान देने वाली हैं। पुरुष और स्त्री को एक दूसरे से कॉम्पीट करना नहीं है बल्कि कॉम्प्लीमेंट करना है और मिलजुल कर मानवता के कल्याण और प्रगति के लिए अपनी अपनी भूमिका निभाना है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, धन्य है वो घर जिस घर में बेटी पैदा होती है। ईश्वर की दया और करुणा उस पूरे परिवार पर होती है। पैगंबर ने कहा, वो पिता जो अपनी बेटी को जान से नहीं मारता, उसे जीने का अधिकार देता है, उसका पालन पोषण करता है, उसी तरह जिस तरह से लड़के का करता है, अच्छी शिक्षा देता है, उसका विवाह करवाता है, तो फिर हम दोनों स्वर्ग में संग संग रहेंगे। पैगंबर ने कहा, लड़की का विवाह उस समय तक नहीं हो सकता जब तक लड़की स्वयं उस रिश्ते को स्वीकार न कर ले। विवाह के लिए लड़की की अनुमति शर्त है। पैगंबर ने औरत को खुला का अधिकार दिया, मतलब ये कि अगर कोई पति इम्पोर्टेंट है, नामर्द है या फिर अपनी पत्नी पर जुल्म और अत्याचार कर रहा है तो पत्नी को यह हक है कि वो अपने पत्नी से अलग हो जाए। पैगंबर ने विधवा को अपनी मर्जी से दोबारा शादी करने का हक दिया। पैगंबर ने कहा, औरत पर रोटी रोजी कमाना, घर का खर्चा चलाना इसकी जिम्मेदारी नहीं है, ये जिम्मेदारी तो मर्द की होती है। औरत अपनी कमाई की खुद मालिक है और अपनी मर्जी से खर्च करने का अधिकार रखती है। पैगंबर ने औरत को अपने पति के, अपने संतान के और अपने माता पिता की संपत्ति में हिस्सा दिया, राइट ऑफ इनहेरिटेंस दिया। लड़की वाले जो लड़के को डाउरी देते हैं, पैगंबर ने उसको पाप घोषित किया और उल्टा लड़की को यह हक दिया कि वो अपने होने वाले पति से मेहर ले, धन ले। मेहर के बिना निकाह असंभव है। जो व्यक्ति किसी औरत का बलात्कार करे, उसकी इज्जत लूटे, पैगंबर ने

कभी कभी माँ बनने का सफर होता है थोड़ा लंबा, बट यू आर नॉट अलोन। खेली फर्टिलिटी सेंटर इज विथ यू विथ साइंस, सोल एंड सेंसिटिविटी। जिंदगी को दो नई शुरुआत खेली IVF के साथ। खेली फर्टिलिटी सेंटर, OPD नंबर 97, शरावती सेकेंड फ्लोर, खेलीज डॉक्टर प्रभाकर पोरे हॉस्पिटल एंड MRC बेलगावी। फोन नंबर 08312551530 एंड 247377 एक्सटेंशन 1530।

0: नमस्कार दोस्तों, आप ट्यून इन है वेणु धोनी 90.4 FM के LE कनसू पे। भाषा संगम हमारा प्रोग्राम चल रहा है, मनीषा आपके साथ है। आज हम बात करेंगे सुप्रजा यस मैम से, जो कि एक न्यूट्रिशनिस्ट एंड होलिस्टिक हेल्थ कोच है। उसी के साथ साथ वो ओन योर हेल्थ उसकी फाउंडर भी है, तो उनसे हम बात करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स, यानी कि जो पैकेजिंग फूड्स हमें मिलते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। वो खाने से हमें क्या नुकसान होता है, फायदा तो होगा ही नहीं बट नुकसान क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, और उसको ऑप्शन करके हम क्या दूसरा यूज कर सकते हैं वो भी हमें मैम आज बताने वाली है। तो आप ट्यून इन रहेगा वेणु धोनी 90.4 FM में। मैम, वेणु धोनी के स्टूडियो में आपका फिर से स्वागत है।
1: थैंक यू मनीषा।
0: आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है एक्चुअली, क्योंकि बहुत इजीली हमें ये सब अवेलेबल होती है चीजें। ट्रैवलिंग के टाइम पे तो ठीक है, बट ट्रैवलिंग छोड़ के भी हम डेली रूटीन में भी ये चीजें बहुत हमारे खाने में ऐड कर लेते हैं। तो ये जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है, मतलब क्या है इसका?
1: तो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स एक खाने का कैटेगरी बोल सकते हैं कि जैसे फ्रूट हो गया, वेजिटेबल हो गया, वैसे अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स भी है।
0: अच्छा,
1: बट ये कहना गलत है कि प्रोसेस्ड फूड्स, बहुत लोग जनरली बोलते हैं कि प्रोसेस्ड फूड्स खराब है। प्रोसेस्ड फूड जरूरी नहीं है कि सारे प्रोसेस्ड फूड्स खराब।

0: अच्छा
1: ओके प्रोसेस फूड्स का भी एक क्लासिफिकेशन होता है इसको नोवा क्लासिफिकेशन बोलते हैं। तो नोवा क्लासिफिकेशन में चार कैटेगरीज है, तो ग्रुप वन, ग्रुप टू, ग्रुप थ्री और ग्रुप फोर। ये सबसे जो मतलब बिल्कुल ही अवॉइड जितना कर सकते हो उतना करो, ये ग्रुप फोर के जो कैटेगरी में आते हैं वैसे खाने हैं। तो अभी चावल को ले लो फॉर एग्जाम्पल, अब अन्न को आप डायरेक्टली ऐसा उठा के नहीं खा सकते हो, खेत से आप तोड़ के नहीं खा सकते हो, उसको एक लेवल आपको प्रोसेस करके ही खा सकते हो। तो वो भी एक लेवल का प्रोसेस्ड फूड ही हो गया, राइस जो है या गेहूं हो गया, रोटी जो आप खाते हैं वो भी एक तरीके से प्रोसेस्ड है, क्योंकि आप गेहूं को ऐसे ही नहीं खा सकते हो, उसको आटे में चक्की में पिसवा के फिर आप उसका रोटी बना के खाते हैं, है ना, या फिर दलिया उसका जो तोड़ के जो ब्रोकन मीट होता है उसको हम खाते हैं, तो वो भी एक लेवल का प्रोसेसिंग हुआ है। तो ये लोगों को लगता है कि प्रोसेस फूड्स आर बैड, कि प्रोसेस फूड खराब है, ये गलत थोड़ा नोशन है, और सारे प्रोसेस फूड्स खराब नहीं है। बट ये जो नोवा क्लासिफिकेशन में जो चौथे कैटेगरी के प्रोसेस फूड्स है, तो नोवा में जो ग्रुप वन का जो क्लासिफिकेशन है ये अपने फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो कुदरत की तरीके से जो आते हैं कि जो डायरेक्टली हम लोग तोड़ के खा सकते हैं, ये नॉर्मल फूड्स जो है ये बहुत ही सही है, मतलब ये नोवा ग्रेड वन क्लासिफिकेशन में आते हैं। तो अच्छा। ये कोई भी प्रोसेसिंग किया हुआ नहीं है कि पौधे का कोई, मतलब जैसे आलू हो गया, आलू तोड़ के हम लोग कुक करके खा सकते हैं, कुकिंग भी एक लेवल का जो खाना बनाते हैं हीट के वजह से वो भी एक लेवल का प्रोसेसिंग ही है, बट ये सारे खाने जो है वो ग्रेड वन मतलब कैटेगरी वन में आते हैं।
0: अच्छा।
1: तो जैसे मैंने बोला चावल हो गया या गेहूं हो गया, जो ब्रेड आते हैं, दाल हो गई, तो ये सारी चीजें जो है कैटेगरी टू में आती है कि उसको एक लेवल का प्रोसेस करके ही हम खा सकते हैं। दालें भी कैटेगरी वन में आएंगी क्योंकि आप दाल को डायरेक्टली खा सकते हो, उसको फिर सुखा के हम दाल बना के खाते हैं, बट उसका जो हरी वाली वो तो हम लोग ऐसे ही भी खा सकते हैं।
0: अच्छा,
1: है ना, तो वो कैटेगरी वन में आ गया। कैटेगरी टू में जैसे मैंने बोला चावल, गेहूं हो गया, ब्रेड हो गए जो घर पे जैसे बनाते हैं ब्रेड, तो ये थोड़ी चीजें जो है वो कैटेगरी टू में आ जाएगी। कैटेगरी थ्री जो है ये होता है कि जो कन्वीनियंस फूड्स कुछ कुछ जैसे है कि फ्रोजन फूड्स है, फ्रोजन वेजिटेबल्स हो गया कि यू नो जैसे मटर फ्रोजन मिलते हैं, या फिर हमारे पुराने जमाने में हम लोग ड्राई करके सबको सन ड्राई करके ऐसे धूप में सुखा के जो वड़िया या फिर जो उसको क्या बोलते हैं कि जैसे भिंडी को सुखा दिया नमक वाले पानी में डाल के फिर उसको बाद में यूज करते हैं, या फिर जैसे ये अवरे काल यहाँ पे बहुत पॉपुलर है कर्नाटका में कि एक सीजन में आता है और उसको फिर साल भर यूज कर सकते हैं,
0: स्टोर करके रखते हैं,
1: जो स्टोर करके हम लोग उसी को वापस यूज करते हैं कि फ्रीज कर लिया या फिर उसको ड्राई करके यूज कर लिया, तो ये जो है कैटेगरी थ्री, तो ये अच्छा। भी ठीक है। तो ये तीन कैटेगरी तो हो ही गए, तो जो चौथा कैटेगरी है ना ये चीज है जो बिल्कुल ही ऐसा अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स का जो टैग हम लोग बोलते हैं ना ये इसको दिया जाता है कि आलू को आलू ना रख के उसको किसी फॉर्म में इतना मरोड़ के तोड़ के जोड़ के कुछ कुछ कुछ कुछ उसमें ऐड करके जो उसका ओरिजिनल फॉर्म से बिल्कुल ही मतलब हम पहचान भी नहीं सके कि अरे ये आलू था एक टाइम पे वाला जैसे बोलते हैं ना, वो कैटेगरी हो गया कैटेगरी चार। तो जैसे चिप्स को हम लोग आलू को चिप्स ऐसा स्लाइस करके घर पे जब बनाते हैं तो उतना नहीं खा पाएंगे आप, बट वही बाहर का अगर आप लेंगे कोई भी ऐसा शेल्फ से उठाएंगे किसी भी प्रोडक्ट को तो आप एक पैकेट क्या तीन पैकेट भी खा सकते हैं
0: आराम से
1: क्योंकि इसमें एक तो है कि जो उसका ओरिजिनल फॉर्म है वो चेंज हो गया है, पर दूसरा जो है ओरिजिनल के साथ साथ बहुत सारी चीजें ऐड भी हुई है उसमें,
0: करेक्ट,
1: तो एडिटिव्स बोलते हैं या इसको प्रेजर्वेटिव्स बोल दो या फिर इमल्सिफायर्स बोल दो, बहुत सारे टर्म्स ऐसे आप अगर पैकेज पढ़ना सीखोगे ना तो रीडिंग लेबल्स करके एक अलग ही टॉपिक है वो पूरा, कि कैसे कोई भी चीज को आप शेल्फ से उठाते हो तो उसमें क्या क्या डला हुआ है, ये चीज पढ़ने का भी एक तरीका होता है, इससे भी बहुत इन्फॉर्मेशन मिलता है।
0: तो एक्चुअली उस चीज का भी नॉलेज हमें रहना चाहिए,
1: करेक्ट, तो वो जैसे मैंने बोला ना वो एक अलग सब्जेक्ट है बिल्कुल ही, बट बहुत जरूरी है लोगों को वो समझना,
0: एग्जैक्टली
1: तो जब हम लोग उसमें जब देखते हैं ना तो इमल्सिफायर हो गया, एसिडिटी रेगुलेटर हो गया, एडिटिव हो गया, प्रेजर्वेटिव हो गया, फलाना ढिंकाना इतनी सारी चीजें उसमें ऐड होती है ना, तो ये जो ओरिजिनल फॉर्म से तो चेंज हुआ ही है बट उसमें और भी चीजें जो ऐड होती है ये अल्ट्रा प्रोसेस फूड कैटेगरी फोर के जो नोवा क्लासिफिकेशन में है, ये सेहत के लिए बिल्कुल ही मतलब अवॉइड करना, जितना अवॉइड करो उतना अच्छा है, क्योंकि इसमें ना कोई भी पौष्टिकता है ही नहीं, बिल्कुल जीरो है, दूसरा क्योंकि ये और चीजें इसमें ऐड करी हुई है तो उसके वजह से भी ये बहुत एडिक्टिव होता है।
0: अच्छा,
1: एडिक्टिव मतलब ये क्या है कि एक बार खाने से रुकता नहीं है, बार बार खाने का मन करता है। तो ये जो एडिक्शन है ना, तो ये ऐड जो किया हुआ है बहुत सारी चीजें, जो मसाले नहीं बोल रही हूँ मैं, मसाले तो अच्छे हैं, मसाले हमारे खाने में भी रहते हैं, बट बाकी जो चीजें जो ऐड होती है ना, जो केमिकल की टाइप में होते हैं, ये हमें बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। और ये एडिक्शन को अवॉइड करने के लिए हमें ये सारी चीजें अवॉइड करनी चाहिए। तो ये कैटेगरी 4 ऑफ अल्ट्रा प्रोसेस फूड की चिप्स हो गया, आपके इंस्टेंट नूडल्स हो गए, या फिर आपके बिस्किट्स, बहुत सारे जो मिलते हैं ना बिस्किट्स, कुछ जो एक यू नो SOS फूड करके होता है, विच इज सॉल्ट, ऑयल और शुगर। तो ये तीन जो है, ये जितना कम मात्रा में या मॉडरेट अमाउंट से हम लोग लेंगे तो ठीक है, बट ये जो अल्ट्रा प्रोसेस कैटेगरी 4 के जो खाने के बारे में मैं जो बोल रही हूँ ना, पैकेज और प्रोसेस फूड्स में, तो इसमें जो ये SOS फूड्स है कि सॉल्ट, ऑयल और शुगर की मात्रा जो है वो बहुत ज्यादा होती है, इधर सॉल्ट एंड ऑयल या शुगर एंड ऑयल या सॉल्ट एंड शुगर, तो ये कॉम्बिनेशन में जो खाने में आता है ना, ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एक्सेस सॉल्ट भी हमारे लिए अच्छा नहीं है, एक्सेस शुगर भी हमारे लिए अच्छा नहीं है, एक्सेस ऑयल भी अच्छा नहीं है। तो ये अल्ट्रा प्रोसेस जो कैटेगरी 4 के फूड में, आपको ये किसी ना किसी फॉर्म में, हिडन फॉर्म्स में ऐसे आता है, तो इसके लिए भी बहुत बहुत ध्यान रखना पड़ता है जब हम लोग ये चीजें खाते हैं तो।
0: अच्छा, तो काफी अच्छी तरह से समझाया और नॉर्मल लोगों के दिमाग में जाए ऐसे सादे सरल भाषा में आपने समझाया है। तो ये सभी चीजें, यानी कि कैटेगरी 4 के बारे में हम ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करें तो ये चीजें खाने से क्या मतलब साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं हमें?
1: देखो, सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम हो रही है लोगों में ना, एवरीबडी मतलब सारे ही वरीड है कि वेट पुट ऑन करने का है ना, तो सबको मोटापा से बिल्कुल ही मतलब किसी को अच्छा नहीं लगता है कि हम मोटे हो।
0: करेक्ट।
1: एक और प्रॉब्लम जो है, बहुत लोग ना बाहर से मोटे नहीं दिखते हैं, बट उनके अंदर जो विसरल फैट जो बोलते हैं, मतलब जैसे फैटी लिवर हो गया, या किडनीज पे फैट डिपॉजिट होना, या हार्ट के मसल्स में, मतलब थोड़ा हार्ट के यू नो वो जो हमारे आर्टरीज में फैट जाके डिपॉजिट होना, तो ये हिडन फैट है। तो ये एक्स्ट्रा जो फैट अक्यूमुलेशन होता है ना, ये एक्स्ट्रा खाने की वजह से, अब ये एक बड़ा प्रॉब्लम है अल्ट्रा प्रोसेस, ये कैटेगरी 4 फूड्स का जो मैं बोल रही हूँ।
0: अच्छा।
1: क्योंकि इसमें बिल्कुल ही न्यूट्रिशन नहीं है, ये सिर्फ स्वाद के लिए हम लोग खाते हैं, और ये स्वाद इसके लिए भी आता है, जैसे मैंने बोला ये एडिक्शन है, तो ये ना कुछ कुछ हमारे ब्रेन के जो सेंटर्स है जो इसको ट्रिगर करता है कि शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, ये हमारे ब्रेन के कुछ ऐसे सेंटर्स को चमकाता है जिससे हमें और खाने का चाह आता है, यू नो। तो जैसे मैंने बोला एडिक्शन है, तो ये एडिक्शन की वजह से क्या होता है कि हमें पता नहीं चलता है कि हम कितना खा रहे हैं। तो वन ऑफ द बिगेस्ट, जो सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है ये खाने का, इज मोटापा, एक्स्ट्रा कैलोरीज आ जाते हैं हमारी बॉडी में जो जरूरी नहीं है। ये तो नहीं सोच सकते कि हर बार मैं देखूं, हर बार मैं कुछ खाऊं, मैं कैलोरी काउंट करते हुए खाऊं, ये तो होता नहीं है। तो
0: काफी लोग वो भी करते हैं
1: बट अनफॉर्चुनेटली वो गलत खानों में करते हैं वो कैलोरी काउंट, कि जैसे मैं यू नो एक मेरे पिछले किसी एक कॉन्वर्सेशन में हमने ये बात किया था कि कैसे चावल को लोग बुरा कह देते हैं क्योंकि उसमें ज्यादा कैलोरी होता है, बट लोग इन चीजों का फोकस नहीं करते कि वो हम कितना साथ में चावल के साथ कितना चिप्स खा रहे हैं, यू नो। तो ये प्रॉब्लम होता है। तो और ये एडिक्शन जो है ना, ये मोटापा एक चीज है, बट जैसे मैंने बोला बहुत लोग मोटे नहीं होते हैं फिर भी फैट छिपा हुआ रहता है।
0: Correct.
1: तो वो जो छिपा हुआ फैट है वो और डिजीजेस के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है, जैसे डायबिटीज हो गया या हाइपरटेंशन हो गया, या जैसे मैंने बोला कि आर्टरीज में जाके क्लॉग होता है फैट, तो उसकी वजह से कार्डियोवास्कुलर हार्ट के इश्यूज हो गए हैं, यू नो। तो ये बहुत सारी हिडन जो है, ये नहीं है कि आपने आज खाया तो कल आपको ये बीमारी हो रही है, बट क्योंकि हमें समझता नहीं है और हम खाते जा रहे हैं, तो इसके वजह से लॉन्ग टर्म पे हमें बहुत सारी बीमारियां आने के बहुत चांसेस हैं। दूसरा जो चीज है, ये खाने खाने से पौष्टिकता तो मिलता नहीं है बॉडी को, और क्योंकि बॉडी को पौष्टिक पदार्थ का जरूरत है तो और मांगते रहता है, डेफिशिएंसीज हो जाती है, कि कमियां हो जाती है, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी जो होता है ना, जो पौष्टिक पदार्थ जो मिलने चाहिए वो नहीं मिलता है, तो उसकी कमी जो होती है बॉडी में, उसके वजह से भी डिजीजेस या बीमारियां आती है, कि विटामिन सी नहीं मिल रहा हो, तो फिर हम क्या करते हैं कि डॉक्टर बोलता है अच्छा आपके ये कमी है तो इसका एक सप्लीमेंट ले लो, इसका एक गोली ले लो, या ये बीमारी दूर करने के लिए हम गोली लेते हैं और फिर गोली की वजह से कुछ और आ जाता है, यू नो। तो ये साइकिल जो है ना, बहुत विशियस साइकिल है, मतलब बिल्कुल ही डेंजरस है। तो ये हमें अवॉइड करना चाहिए। और मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बिल्कुल ही जीरो जीरो कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, बट नहीं पॉसिबल है। फ्रेंकली हम ऐसे टाइम में भी रहते हैं कि जैसे आपने बोला ट्रैवल इतना करते हैं, तो ट्रैवल में तो कुछ ना खाना पड़ता है, जब कुछ मिलता नहीं है तो वो जो
0: अवेलेबल रहता है
1: जो अवेलेबल रहता है खा लेते हैं। बट 90% जब आपके कंट्रोल में चीजें हैं तो आप कितना इतना इसको अवॉइड कर सकते हैं। अब कैसे बहुत सारे जो ब्रेकफास्ट के आइटम्स है, अब सिर्फ कॉर्नफ्लेक्स खा रहे हो तो ठीक है, बट आजकल मतलब हम लोग इतने अलग अलग तरीके के कॉर्नफ्लेक्स या म्यूसली या ऐसे कुछ कुछ चीजें खा रहे हैं जिसमें आप एक्चुअली देखा जाए तो बहुत सारा शुगर हो गया, बहुत सारा ऑयल हो गया। तो ये जो है ना, ये ज्यादा क्वांटिटी में हम लोग खा रहे हैं। हमारा जो कन्वेंशनल जो ट्रेडिशनली जो ब्रेकफास्ट होता था उससे हटके हम लोग कुछ बिल्कुल ही नई तरीके से खा रहे हैं जो जरूरी नहीं है। तो ये हैबिट फॉर्मिंग भी हो गया है कि बच्चे ये आदत जो है ना, जो हमें कन्वीनियंट लग रहा है इसलिए हम बच्चों को भी वो आदत डाल रहे हैं, और बच्चों में बीमारियां बिल्कुल छोटे टाइम से ही चालू हो रहा है।
0: छोटे से, करेक्ट।
1: स्नैक्स हो गया कि यू नो हेल्दी स्नैक्स होते थे एक टाइम पे, मम्मी जो घर पे बना के रखती थी, थोड़ा मिलता था, थोड़ा हम लोग खाते थे। पर अभी कभी भी बच्चे के हाथ में पैसे दे दो, जाके खरीद के खा लिया। वो स्पेशली अल्ट्रा प्रोसेस फूड, ये जो कैटेगरी 4 के खाने हैं, एक और इनकी खासियत क्या है कि ये बहुत कलरफुल होते हैं। कि आपको सारे पैकेजिंग देखो इन चीजों का, तो आपको दिखेगा रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन। और ये भी एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, क्योंकि हमें ना ह्यूमंस मनुष्य को कलर्स बहुत अट्रैक्ट करते हैं। हमारी आंखों में ऐसे कलर रिसेप्टर्स है जिससे कलर देख के हमें अच्छा लगता है। तो जब बगीचे में जाते हैं, अच्छे कलरफुल फूल देखते हैं तो वह दिल खुश होता है। कि फ्रूट्स देखते हैं तोड़ के खाने का मन करता है, क्योंकि कलर्स हमें अट्रैक्ट करता है। तो इस चीज मार्केटिंग में एक्सप्लॉइट किया है, कि मतलब इसको एडवांटेज लिया है और पैकेजिंग जो है तक कलरफुल बनाते हैं। तो आप कहीं पे भी छोटे से छोटे दुकान, वो टपरी में भी आप जाके बैठो तो आपको वो पैकेट्स हैंगिंग दिखते हैं कि जो कलरफुल है, और जैसे ही आप देखो तो आपको मन करता है चलो यार एक खा लेते हैं। तो ये जो चीज है ना, इसको भी थोड़ा ध्यान में रख के हमें करना चाहिए कि कलरफुल पैकेजिंग की वजह से भी हम अट्रैक्ट होते हैं इस पे, ये कैटेगरी 4 पे।
0: तो जैसे आपने बताया कि ऐसे सब कुछ अगर पैकेजिंग अट्रैक्टिव पैकेजेस देखे तो हम अट्रैक्ट हो जाते हैं, या फिर खाने के लिए बैठे ऐसी कुछ चीजें लेके तो हमें पता नहीं चलता कि कितना कुछ खा रहे हम। तो वो जो हमारा माइंडसेट रहता है जिसका आपने अपनी बातों में जिक्र किया, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए, जबकि आप होलिस्टिक हेल्थ कोच भी है।
1: तो थैंक यू फॉर दैट क्वेश्चन मनीषा। तो माइंड बॉडी जो कनेक्शन है ना, वो बहुत पावरफुल है। हम जो खाते हैं, जो पेट में जाता है वही दिमाग में भी असर करता है, और हम जो दिमाग में सोचते हैं वो पेट पे भी असर करता है। ये गट ब्रेन एक्सेस करके बोलते हैं, और इसमें बहुत रिसर्च है।
0: अच्छा।
1: और आगे आगे और ज्यादा रिसर्च लोग फोकस कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज भी ना हमारे खाने की वजह से होते हैं। तो ये जो अल्ट्रा प्रोसेस कैटेगरी 4 के जो फूड्स है, जो खाना है, इससे मेंटल हेल्थ पे भी सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट आ रहा है। एक रिसर्च है जो ये जिसमें ये प्रूव हुआ है कि शुगर, जो वाइट शुगर हम लोग खाते हैं किसी भी फॉर्म में, ये ब्रेन के उन एरियाज को लाइट अप करता है जो जैसा कोकेन करता है। तो मतलब आप समझो कि वाइट शुगर कुड बी एज एडिक्टिव एज कोकेन।
0: बापरे।
1: तो ऐसा रिसर्च भी है, बट मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बिल्कुल ही सब कुछ बंद कर दो, बट हमें ध्यान में रख के हमें ये खाना चाहिए कि भाई जैसे मैंने बोला कि ट्रैवल के वक्त कुछ और अल्टरनेटिव नहीं है तो खाइए। रोजमर्रा की जिंदगी में आपको जरूरत नहीं है, जो चीज जरूरत नहीं है वो जबरदस्ती क्यों लेना है, जस्ट बिकॉज की है। हाँ है, बट वो आपकी सेहत के लिए जरूरी नहीं है ना। तो अभी माइंड को आप कैसे कंट्रोल करें, देखो कोई भी चीज कंट्रोल का जो वर्ड है ना वो बहुत गलत वर्ड है। कंट्रोल, जितना हम लोग कंट्रोल करेंगे उतना हम लोगों को छूट लगेगा कि भाई मुझे करना है करना है करना है। जितना हम लोग रेस्ट्रिक्ट करेंगे अपने आप को उतना हमारा दिल ललचाएगा कि और भी करना चाहिए और भी करना चाहिए। तो ये कंट्रोल जो वर्ड है ना वो बहुत गलत वर्ड है।
0: अच्छा,
1: वॉट इज इम्पॉर्टेंट की समझ, जो एक लेवल का समझ अगर हम में आ गया ना तो ये कंडीशन ऑटोमेटिकली आएगा कि चलो भाई मैं इसको आज अवॉइड कर सकता हूँ या इसको मैं आज नहीं खाऊंगी।
0: अच्छा,
1: जरूरी नहीं है मुझे। तो ये समझ का बहुत जरूरी है, मोर देन कंट्रोल अंडरस्टैंडिंग जो बोलते हैं ना, ये जरूरी है। तो अंडरस्टैंडिंग एक बार आ गया कि हम अवेयरनेस के साथ, तो एज अ होलिस्टिक हेल्थ कोच माइंड बॉडी कनेक्शन का जैसे मैंने बात किया, माइंडफुली समझ के साथ जब हम खाते हैं खाना तो उससे बॉडी को भी बेनिफिट होता है। दूसरा क्या होता है कि ये अननेसेसरी जो खाने का एक लालच जो होता है ना कि बार बार मुझे खाना है, और ये देख लिया वो खा लिया, ये खाना है वो खाना है, कि समोसे अच्छे लग रहे हैं,
0: या फिर किसी किसी किन किन लोगों को स्वीट खाने की क्रेविंग्स आते हैं बीच बीच में, या फिर कुछ स्नैक्स खाने के तो आते ही आते हैं, तो ऐसे भी चीजें बहुत बार होती है।
1: करेक्ट, तो यही है मतलब खाना देखा खाने का मन करने का ये जो आदत हो गया है ना, तो ये अगर समझ अपना अंडरस्टैंडिंग अच्छा हो जाए खाने के बारे में, जो रिलेशनशिप होता है ना फूड के साथ, कि बहुत लोगों का फूड के साथ क्या है कि एक ऑब्सेशन जैसा हो जाता है, या फिर एक क्या बोलते हैं नेगेटिव एसोसिएशन हो जाता है, कि जैसे मैंने बोला ना कि कैलोरीज फोकस करके खाते हैं कि ये खाने से मेरा वेट बढ़ जाएगा, ये सब नेगेटिव एसोसिएशन हो गया कि चावल खाने से वेट बढ़ गया। ऐसा अगर सोच सोच के खाएंगे ना तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम होता है। इसके लिए समझना बहुत जरूरी है कि कौन सा खाना हमारे लिए अच्छा है, क्या खाने से हमारे सेहत के लिए बेनिफिट होगा, और क्या अवॉइड करने से या बिल्कुल ही कम करने से सेहत के लिए अच्छा है। दूसरा, आपने एक पॉइंट बताया जो शुगर खाया, क्रेविंग्स की जो बात करी थी, तो बहुत बार बॉडी को जब न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता है या जो पौष्टिकता जो जरूरी है वो अगर नहीं मिलता है तो वो भी क्रेविंग्स के फॉर्म में आता है, लालच जैसे, मतलब कि कुछ हमारा जो थोड़ा जो तलब होता है कि कुछ खाने का, कि कुछ मीठा खाने का, कुछ खट्टा खाने का, ये बहुत बार ये भी होता है कि अगर बॉडी को न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है तो फिर ये तलब होती है कि क्रेविंग्स होते हैं।
0: बाप रे,
1: तो इसके लिए भी जरूरी है कि हम पौष्टिक खाना खाए। तो घूम फिर के ना मेरा फोकस वही रहता है कि कितना पौष्टिकता आप हर रोज, एवरी मील, हर मील में, हर खाने, मतलब हर टाइम जब भी आप खाना खाते हो कितना आप फोकस करोगे पौष्टिकता पे, तो उतना आपका ये जो बार बार खाने का जो मन करता है ये कम हो जाएगा,
0: कम हो जाएगा।
1: अच्छा। दूसरा जो है, जो कंट्रोल की बात हो रही थी माइंड का जो है ना, कि आप मीनिंगफुली खाओ, कि माइंडफुली, कि सोच के, मतलब आप उस टाइम पे खाने के टाइम पे और कोई काम ना करें, सिर्फ खाने पे फोकस रखें कि ये खाना। तो वो चिप्स का पैकेट भी ना, अगर आप माइंडफुली खाओगे तो आप 4 पैकेट नहीं खाओगे, आप 4 चिप्स के बाद बंद कर दोगे।
0: अच्छा,
1: क्योंकि उतना पावरफुल है हमारा माइंड और बॉडी का कनेक्शन।
0: बाप रे,
1: तो वो बहुत जरूरी है कि हम लोगों को ध्यान में रखो कि कंट्रोल ना करते हुए समझदारी, अंडरस्टैंडिंग पे अगर हम लोग फोकस करें तो डेफिनेटली लाइफ बिकम्स इजियर, मतलब खाने पे इतना ज्यादा स्ट्रेस लेने का जरूरत ही नहीं है।
0: काफी अच्छी तरह से समझाया मैम, और सच में मतलब आपने जैसे अभी बताया वैसे होता है, मुझे भी होता है वैसे, कि कुछ मीठा खाने का मन हो जाए और वो खाए बगैर मतलब चैन नहीं पड़ता, बहुत ही बेचैनी सी महसूस होती है।
1: वो बेचैनी जो वर्ड यूज किया ना आपने, हाँ, वो भी ये अल्ट्रा प्रोसेस फूड कैटेगरी 4 के फूड से ये जो
0: रिलेटेड
1: ही है।
0: अच्छा,
1: और आज इनफैक्ट पिछले हफ्ते में मैंने एक आर्टिकल रिसर्च पढ़ा था जहाँ पे क्लियर एविडेंस निकला है मेंटल हेल्थ और ये अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स कैटेगरी 4 फूड्स के, एक बिल्कुल ही आई थिंक हार्वर्ड का, मुझे याद नहीं आ रहा है कौन सा वो रिसर्च था, बट जस्ट लास्ट वीक मैंने पढ़ा था, 10 दिन भी नहीं हुए हैं, ये रिसर्च निकला है वेरी क्लियरली कि कैसे कैटेगरी 4 के अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स और मेंटल हेल्थ पे जो इम्पैक्ट है। एंड देखा जाए तो मतलब अक्रॉस द बोर्ड, आप बच्चे देख लो, बड़े देख लो, बुजुर्ग देख लो, कितने में भी ये यू नो डिप्रेशन के एपिसोड्स हो गया, या नेगेटिव थिंकिंग, या ये ना ये इमोशनली फीलिंग लो वाला जो एपिसोड्स है, ये सारे कितने इंक्रीज हो चुके हैं हमारे लाइफ में। पहले इतना नहीं होता था, था ऐसा नहीं कि नहीं था, बट अब बहुत ही ज्यादा हम लोगों को दिखने लगा है बच्चों में भी, मतलब छोटे छोटे स्कूल जाते बच्चों में डिप्रेशन और एंग्जाइटी और इन चीजों का हम लोगों का बात होता है। फिर जो ADHD यू नो वो क्या बोलते हैं एक एंग्जाइटी का जो सिंड्रोम है बच्चों में, ये सब बहुत बढ़ गया है। तो अटेंशन डेफिसिट हाइपर डिसऑर्डर्स जो होते हैं यू नो कि बच्चों में अटेंशन स्पैन जो है बिल्कुल ही कम हो गया है।
0: करेक्ट।
1: तो ये सारी चीजें भी ये अल्ट्रा प्रोसेस कैटेगरी 4 के जो फूड्स है इसकी वजह से बहुत ज्यादा वो होता है। तो हम लोग को जितना अवॉइड करें स्पेशली बच्चों में, और मेरा एक ये फोकस है कि स्कूल्स में जाके मैं इसके बारे में बात करूं कि पेरेंट्स और टीचर्स को बताऊं कि भाई जो खाना है, कि स्कूल के बाहर आप देखो तो कितने सारे रेस्टोरेंट्स हैं, कितने सारे दुकानें हैं जो ये खाना बेचती है, राइट। तो ये थोड़ा जितना हम लोग अवेयरनेस क्रिएट करेंगे इन खानों के बारे में उतना अच्छा है स्पेशली फ्यूचर का मध्य हम तो अभी मतलब मिडिल एज के हो रहे हैं, मैं तो अभी मिडिल एज में हिट कर रही हूँ, बट हमारे जो फ्यूचर जनरेशन है ये और भी ज्यादा इनके ऑप्शन है. मेरे बचपन में इतने ऑप्शन नहीं थे तो हमारा रिलेटिवली हेल्दी होता था, बट आजकल वैसा नहीं है और आगे जाके और भी प्रोसेसिंग होते जा रहा है. तो खाने को खाने के रूप में न देख के हम लोग उसको सिर्फ टेस्ट

0: नहीं है कि हम हर बार कुछ नया नया बनाए, कुछ वैरायटी लाए, और कभी कभी इन चीजों का सहारा लेना पड़ता है। तो जैसे मैंने बोला कि वन ऑफ द ऑप्शंस जो है, जो नट्स नट्स होते हैं ना, कि कैशूज हो गए, बादाम हो गए, वॉलनट्स हो गए, ये बहुत ही हेल्दी भी है, बहुत फिलिंग भी है, और बहुत इजीली सबको मिल भी जाता है। कि मतलब हाँ, कुछ नट्स थोड़े महंगे होते हैं, कुछ थोड़े सस्ते होते हैं, तो जो पॉसिबल है नट्स, ये एक ऑल्टरनेटिव है। कि फिर ड्राई फ्रूट्स जो हो गया, कि आप चॉकलेट ना देते हुए कि थोड़े किशमिश हो गया या डेट्स हो गए, तो एक बहुत ही सिंपल एक जो डिजर्ट जो बोलते हैं ना, कि आप वो शुगर वाला जो स्वीट है उसको ना छोड़ के आप डेट्स और पीनट्स, मतलब अपने शिंगदाना और खजूर का एक लड्डू बना के रख लो। थोड़ा ये लड्डू सब फ्रिज में रख लोगे तो आप बना के बल्क में, तो आप बच्चे को टिफिन में भी दे सकते हो, या कि आपको वो एक प्रोटीन बार जैसा भी हो गया, या फिर ये बहुत सारे सीड्स जो है, जैसे सनफ्लावर सीड्स हो गया या वाटरमेलन सीड्स हो गया, ये भी एक हेल्दी स्नैक हो गया। या आप घर पे चिवड़ा बना सकते हो, बहुत ईजिली बनता है, पोहा और ये शिंगदाना और कुछ नट्स और ये सब डाल के आप हल्के से भून लो उसको, नमक मिर्ची डाल के इसका एक चिवड़ा बन गया, वो एक हेल्दी स्नैक हो गया। तो थोड़ा एक मोर इम्पॉर्टेंट क्या है कि एक माइंडसेट शिफ्ट होना चाहिए, कि थोड़ा हमें अपने थिंकिंग में बदली लाना चाहिए, कि भाई हर चीज मैं इजिली ना लेके थोड़ा मैं एफर्ट डाल के कैसे मैं चेंज कर सकती हूँ। दूसरा स्नैक हो गया फ्रूट, कि फ्रूट हम कहीं पे भी मिल जाएगा, आप कहीं भी ट्रैवल पे भी फ्रूट खा सकते हो। आजकल मैं क्या करने लगी हूँ कि मैं अपने साथ जब भी ट्रैवल, पहले तो क्या होता था कि एयरपोर्ट में जो मिलता है, फ्लाइट में जो मिलता है वो खा लो, ट्रेन में तो पैंट्री कार होता है तो उससे खरीद के, आजकल मैं वैसे नहीं करती हूँ। मैं थोड़ा प्लानिंग कर लेती हूँ कि मैं पहले से, जैसे बचपन में हम लोग ट्रेन में जाते थे तो डब्बा लेके जाते थे खाना, है ना, कि रोटी बन गया, पराठा बन गया, चावल, मतलब कुछ तो लेके जाते थे ना साथ में, मैं वही करती हूँ। पॉसिबल नहीं है शायद सबको ये करने के लिए, बट थोड़ा एफर्ट तो डाल ही सकते हैं कि थोड़ा हेल्दी स्नैक, जैसे मैंने बोला चिवड़ा बन गया, या फिर आप नट्स और सीड्स जैसे ड्राई फ्रूट्स ले लिया, या लड्डू बना के लेके चले गए, फ्रूट ले लिया, या फिर थोड़े स्प्राउट, स्प्राउट चाट एक बहुत हेल्दी स्नैक जो होता है और बच्चों को भी अच्छा लगता है, कि भेल के बजाय कि आप भेल भी बना सकते हो, या फिर कॉर्न, लोग स्टीम्ड कॉर्न खाते हैं रस्ते में, तो वो भी एक ऑप्शन हो गया। तो कुछ कुछ जो है जो प्रोसेस्ड है, जैसे मैंने बोला नोवा क्लासिफिकेशन 4 कैटेगरी ना होके 3 कैटेगरी या 2 कैटेगरी के जो पैकेज्ड है, जो प्रॉपर फूड्स है, आजकल कुछ कुछ हेल्दी स्नैक्स भी आने लगे हैं।
1: करेक्ट।
0: बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है चीजों, पेरेंट्स और बच्चों में और सभी में, इनफैक्ट अक्रॉस एज ग्रुप्स में, क्या है कि हमें पैकेजिंग पढ़ना सीखना चाहिए। कि अगर कोई भी चीज, जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्रेड हो गया, कि ब्रेड प्रोसेस्ड ही है, बट ब्रेड बनाने के लिए क्या लगता है, आटा लगता है, यीस्ट, वो जो बैक्टीरिया, वो जो फंगस होता है जो जिससे उसका वो होता है, वो लगता है, और पानी लगता है। तो ये 3 चीजों के अलावा 4, 5, 6 चीजें अगर ब्रेड के पैकेट में हो तो वो अवॉइड करो। वो ब्रेड लो कि मतलब जिसमें सिर्फ ये 3 या 4 चीजें, नमक हो गया बस, कि उसमें तेल भी आ गया, उसमें प्रिजर्वेटिव भी आ गया, ये ऐसे ब्रेड का जरूरत ही नहीं है। तो ये थोड़ा शिफ्ट होना चाहिए माइंडसेट में। बट द इजिएस्ट जो इजिली अवेलेबल है, हर वक्त कहीं पे भी मिलता है, आप शायद सबसे ठंडे वाले रीजन में भी जाओ या सबसे गर्मी वाले रीजन में जाओ, आपको फ्रूट्स तो मिलते
1: मिल ही
0: ही है।
1: जाएंगे।
0: तो फ्रूट्स हो गए आपके, नट्स हो गए, सीड्स हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए, तो ये कुछ हेल्दी ऑप्शंस है। फिर घर पे कुछ कुछ चीजें बना के रख लो, चिवड़ा हो गया या फिर जैसे लड्डू हो गए, तो ये कुछ हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स आप अगर धीरे धीरे इंक्लूड करने लगेंगे तो ऑटोमेटिकली हैबिट जो है वो चेंज होगा।
1: बिल्कुल। यानी कि हमें थोड़ा सा समय निकालने की जरूरत है, थोड़े से एफर्ट्स डालने की जरूरत है, और थोड़ा सा हमारे खाने में बदलाव लाने की जरूरत है।
0: देखो, एफर्ट के बगैर कुछ भी नहीं मिलता है।
1: Correct.
0: आपको अगर अच्छी बॉडी बनानी है तो मेहनत तो लगता ही है, और मेहनत सिर्फ खाने में नहीं, किस तरह का खाना है वो, उसमें भी मेहनत लगता है। आपका जो बाकी जो लाइफस्टाइल है, कि आप फिजिकल एक्टिविटी, कि आप फिटनेस में है, कि आप वॉकिंग कर रहे हैं या रनिंग कर रहे हैं या ये कुछ कर रहे हैं, आप कब सोते हैं, कितना सोते हैं, आप आपके स्ट्रेस क्या है, मतलब किस चीज के वजह से आप स्ट्रेस कितना लेते हैं और कितना लंबा लेते हैं स्ट्रेस, तो ये सारी चीजें भी से, तो हेल्थ जो है वो सिर्फ खाने से नहीं बनती है, हेल्थ जो है वो बहुत सारी चीजों से बनती है, और हेल्दी रहने के लिए मेहनत तो करना ही पड़ता है।
1: बिल्कुल।
0: मेहनत के बगैर कोई भी चीज नहीं होती है।
1: बिल्कुल। काफी लोग बॉडी बनाने की भी ट्राई करते हैं जैसे आपने अभी बोला, और बहुत सारे लोग अभी मोटापे से परेशान है, जो वेट लॉस के लिए ट्राई करते रहते हैं, काफी कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते।

0: ते हैं यूट्यूब पे देख के या फिर कुछ सोशल मीडिया पे देख के, जो बिल्कुल बहुत ही गलत है। क्योंकि एक सजेशन लेके अच्छे डॉक्टर से रहे या फिर डायटिशियन से रहे, न्यूट्रिशनिस्ट से रहे, उनसे सजेशन लेके ही अपना डाइट रहे या फिर खाना पीना अपना सेट करना चाहिए, तभी हमें आगे चल के कुछ साइड इफेक्ट्स नहीं मिलेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक था बहुत ही इंटरेस्टिंग था, जो अभी के यूथ जनरेशन है वो इस पे बहुत एडिक्ट है इन चीजों के लिए, तो उनके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। और आज के लिए थैंक यू सो मच मैम।
1: थैंक यू वेरी मच।

डॉक्टर प्रभाकर कोरे चैरिटेबल हॉस्पिटल नेहरू नगर बेलगाम 24 आवर्स ऑफ फ्री सर्विसेज फॉर ओपीडी एंड आईपीडी पेशेंट्स फ्री ईसीजी फ्री एक्सरे फ्री सोनोग्राफी एंड फ्री लैब सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू द नीडी पेशेंट्स जनरल ऑपरेशंस कैटरेक्ट एंड सी सेक्शंस आर डन फ्री ऑफ कॉस्ट मोर देन 70 लैक्स ऑफ ओपीडी पेशेंट्स एंड 6 लैक्स ऑफ आईपीडी पेशेंट्स हैव बीन बेनिफिटेड बाय केएलई'स डॉक्टर प्रभाकर कोरे चैरिटेबल हॉस्पिटल अराउंड 3 लैक्स ऑफ फ्री सर्जरीज 85,000 प्लस फ्री डिलीवरीज 45,000 plus free cataract operations have been conducted. To avail the free services and treatments, please contact 99726-91578 and 77954-35314.

गुड इवनिंग और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे शो बी रिलैक्स। और आप ट्यून कर चुके हैं बेलगावी का सबसे पहला और सबसे बड़ा रेडियो स्टेशन वेनु ध्वनि 90.4 KLE कनसू। और मैं हूं आप सभी का प्यारा दुलारा रेडियो होस्ट और रेडियो दोस्त आरजे आयुष। आज इस मनमोहित शाम में हम बात करने वाले एक ऐसे एहसास की जिसमें कभी दिमाग से नहीं बल्कि दिल से सोचा जाता है, जिसमें इतने सारे भाव है और विचार एक साथ होते हैं। आपको बताता हूँ, वही जो शाहजहां को मुमताज से था, अरे वही जो लैला को मजनू से था और रोमियो को जूलियट से, वही जो रणवीर को दीपिका से था और हमको आपसे। जी हाँ, अफेक्शन से लेकर अट्रैक्शन तक, आई लव यू से लेकर सॉरी तक, जब वी मेट से लेकर मैंने प्यार क्यों किया तक, जस्ट जोकिंग। हम बात कर रहे हैं प्यार की, यानी लव और रोमांस की। क्या बात है, आज तो सबने अपनी कुर्सी की पेटिया एकदम कस के बांध ली है। तो तैयार हो जाइए इस इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए और इंटरेस्टिंग एपिसोड के लिए। अब देखिए, एपिसोड प्रेम का है तो शुरुआत भी कुछ रोमांटिक म्यूजिक से ही करना पड़ेगी। तो सुनते रहिए हमारा शो वेनु ध्वनि 90.4 KLE कनसू।

हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर फेवरेट शो बी रिलैक्स। और आपने ट्यून कर लिया है वेणु ध्वनि 90.4 KLE कनासू। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात कर रहे हैं। देखो, अब वेदर इतना रोमांटिक है तो बातें भी थोड़ी रोमांटिक होनी चाहिए ना, है ना। हम सभी को लाइफ में एक ऐसी लड़की पर या लड़के पर क्रश जरूर आता है जो हमारी लीग से थोड़ा सा ऊपर होता है, जिसको हम सोचते हैं यार ये मेरी लीग में तो बिल्कुल नहीं है। उफ वो स्माइल और उफ वो हेयर फ्लिकिंग एटीट्यूड, तो हमें तो लगता है यार कुछ नहीं होने वाला। अब वो देखो, वो इतनी खूबसूरत और हाई फाई, और हम ठहरे सिंपल साधे लड़के। तो इसी पर एक बड़ी मजेदार लाइंस है, कहीं सुनी थी, मेरे जहन में रह गई, वो आपको मैं सुनाता हूँ, आप शायद कविताओं से ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। तो वो ऐसे है, इसमें एक शब्द है कार्बन मोबाइल। कार्बन मोबाइल बहुत पहले चलते थे, जो एक कंपनी का नाम है, कि मैं कार्बन मोबाइल की फोटो हूँ, तुम आईफोन की सेल्फी हो, मैं सड़क छाप काला खट्टा, तुम महंगी फालूदा कुल्फी हो। ध्यान से सुनिएगा, मैं एक छोटे से ऑफिस का हाफ डे, ये मैं बता रहा हूँ, मतलब कि वो मुझसे कितनी बड़ी और कैसे मेरे आउट ऑफ लीग से है। तो कि मैं एक छोटे से ऑफिस का हाफ डे, तुम एग्जॉटिक वेकेशन हो, मैं बिन फाटक रेलवे क्रॉसिंग और तुम मेट्रो का एसी स्टेशन हो, मैं हूँ गर्मी की लू जैसा, तुम मानसून की बारिश हो, मैं मिन्नत किसी भिखारी की और तुम VIP सिफारिश हो, तुम योगी मोदी सी तेजस्वी और मैं राहुल गांधी का भाषण हूँ। चाहे देखिए मैच बड़ा मिस मैच है अपना, पर तुम संग मेरे जचती हो, एक बात कहूं अगर सुनती हो, तुम मुझे बड़ी अच्छी लगती हो। हाँ चलिए, तो हिम्मत कीजिए और करिए उनसे बात, और सुनते रहिए हमारा ये रोमांटिक शो बी रिलैक्स इस रोमांटिक शाम में। ओके, ओनली ऑन वेणु ध्वनि 90.4 KLE कनसू।

हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर इस रोमांटिक एपिसोड में। आपने ट्यून कर लिया है वेणु ध्वनि 90.4 KLE कनसु और मैं हूं आपका लव गुरु। ना ना ना ना ना, नॉट अ लव गुरु, आई एम योर रेडियो होस्ट एंड रेडियो दोस्त आरजे आयुष। दोस्तों, हमारी जिंदगी में कई बार वो मीठा एहसास होता है। सिंपल शब्दों में आपको मैं अगर बताऊं, जैसे प्यार के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे स्कूल वाला प्यार जो सबको होता है, आपको हुआ कि नहीं पता नहीं, मुझे तो जरूर हुआ, कॉलेज वाला प्यार और फिर एक क्रश वाला प्यार जो सिर्फ सिंगल साइडेड ही होता है मोस्ट ऑफ टाइम्स। और आजकल तो एक और प्यार चल रहा है जो कि बहुत ऑनलाइन है, वो है इंस्टाग्राम वाला प्यार, बहुत हो रहा है लोगों को आजकल। कुल मिलाकर जैसे जैसे आप बड़े होते जा रहे हैं, प्यार की परिभाषा और प्यार की डेफिनेशन आपके लिए वैसे ही बदलती रहती है। और इन सब लव स्टोरीज में से एक स्टोरी ऐसी होती है जिसे हम किसी से शेयर नहीं करते, बस उसे अकेले में महसूस करते हैं, जिनके लिए हम ऑनलाइन स्टोरीज तो लगाते हैं पर जैसे ही वो हमारी स्टोरीज देख लेते हैं हम उन्हें फट से डिलीट कर देते हैं। वो सच्चा प्यार। मुझे पता है आप भी अभी मुझे सुनकर थोड़ा सा मुस्कुरा रहे होंगे। दोस्तों, ये प्यार आपका सालों साल भुलाया नहीं जाता। जिनके पास है वो बहुत खुश नसीब है और कुछ लोग अभी भी उसकी तलाश कर रहे हैं। चिंता ना करिए, मेरी वेल विशेस आपके साथ हमेशा है, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। तो उन्हीं को डेडिकेट करते हुए बजाते हैं कुछ दिल को छू जाने वाले गाने। सुनते रहिए हमारा शो वेणु ध्वनि 90.4 KLE कनसु।

दोस्तों, जैसे कि हम बात कर रहे थे सच्चे प्यार की, अब जिन्हें मिल गया वो तो बहुत खुश है। और कुछ मेरे सिंगल दोस्त ऐसे भी हैं जो उसकी अभी तक तलाश कर रहे हैं, जो अपनी क्रश की गलियों से गुजरते हैं उन्हें सिर्फ एक नजर देखने के लिए। क्रश का मतलब मैं आपको बता दूं कि जिन्हें आप पसंद करते हैं पर आप सोचते कि वो आपको पसंद नहीं करते या आपकी आउट ऑफ लीग है, तो उस पर ये कुछ लाइन है। तो वो कुछ लाइनें कुछ यूं है, इसी से रिलेटेड है कि जब वो क्रश को देखने के लिए जाते हैं और उनकी गलियों में घूमते हैं सिर्फ उनको एक नजर देखने के लिए, उस पर कुछ लाइनें मेरे ध्यान में आती है। आपको बताता हूँ कि इस उम्मीद में तू खिड़की से झांक ले शायद, ध्यान से सुनिएगा, बहुत मस्त शायरी है ये, कि इस उम्मीद में तू खिड़की से झांक ले शायद, मैंने गली में खेलते हुए बच्चे लड़वा दिए। आप जब इतनी प्यारी शायरी बोली है तो उतना ही प्यारा गाना आपको सुनाएंगे। सुनते रहिए वेणु ध्वनि 90.4 KLE कनसू।

हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर शो बी रिलैक्स। और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे रिलेटेबल टॉपिक की जो शायद आप भी इस वक्त महसूस कर रहे होंगे। हम बात कर रहे हैं रोमांस की, लव की, यानी प्रेम की। दोस्तों, रिश्ते बनाने में जिंदगी का एक बहुत लंबा अरसा गुजर जाता है, यानी बहुत वक्त जाता है, और टूटने में कुछ ही पल निकल जाते हैं। तो अगर आपके पास ऐसे गहरे रिश्ते हैं तो उन्हें एकदम संभाल कर रखिए, क्योंकि आपको बताओ, सांसों की डोर बहुत नाजुक होती है, किस करवट से टूट जाए ये किसी को नहीं पता। और याद रखिए दोस्तों, ऐसा इंसान ढूंढिए जो आपको वैसे ही एक्सेप्ट करे जैसे आप है। देखिए, किसी के मरने पर तो लाखों रोने वाले होंगे, तलाश उसकी करो जो आपके रोने पर मर जाए, बराबर ना? लेकिन आप मेरे शेरों से घायल ना होइए। आपको सुनाते हैं कुछ मरहम लगाने वाले गाने, तो सुनते रहिए वेणु ध्वनि 90.4 KLE कनसू।

हेलो दोस्तों, बने रहने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे जैसे हमारा एपिसोड आगे बढ़ता जा रहा है, हमारा ये रिश्ता भी वैसे वैसे गहरा होता जा रहा है। मुझे बड़ी खुशी होती है जब आप शाम को अपना कीमती टाइम निकाल कर हमें सुनते हैं, और हमारा ये फर्ज है कि आपको आपके काम के साथ साथ थोड़ा थोड़ा एंटरटेन करते रहे। तो फिर चलिए ट्यून कर लीजिए हमारा चैनल वेणु ध्वनि 90.4 KLE कनसु RJ आयुष के साथ। दोस्तों, लाइफ में अगर आपको कोई पसंद हो तो अपना चांस जरूर लीजिए, पर अपने लहजे में रहकर, अपना तमीज, अपनी लहजे को कभी ना भूले। जितना इंसान उसके बिहेवियर से बड़ा होता है, उतना वो दिल से भी बड़ा होता है। तो याद रखिए, हमेशा अपने लहजे में रहिए, तमीज में रहिए, बिहेवियर को एकदम बना के रखेंगे तो लाइफ एकदम मस्त चलने वाली है बाबा। और अगर हाँ हो जाए फिर तो क्या है, बारिश का मौसम है, डेट पर जाइए, एक दूसरे को करियर में सपोर्ट कीजिए, वीकनेसेस को ओवरकम कीजिए और ट्रिप्स पे जाइए। और अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो भी जाता है तो उसे बात करके सुलझा लीजिए। अब देखिए, अच्छे रिश्तों में थोड़ी भोड़ी नोक झोंक होती रहती है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। जहाँ प्यार होता है वहाँ नोक झोंक भी बहुत ही जरूरी होती है। और अगर आपकी भी इस वक्त किसी से नोक झोंक हो चुकी हो या चल रही हो या आपकी बातों से होने वाली हो, तो बिना कुछ सोचे समझे एक दूसरे को मना लीजिए, क्योंकि ये वक्त लौट कर आने वाला नहीं है, लेकिन हम लौट कर जरूर आने वाले हैं। आफ्टर मेकिंग योर लिसन दिस सुपरहिट रोमांटिक सॉन्ग, सो सुनते रहिए वेणु ध्वनि 90.4 KLE कनसु।

दोस्तों प्यार या रोमांस बहुत ही ब्यूटीफुल एहसास होता है जो ह्यूमैनिटी को बनाए रखता है और सालों तक नहीं सेंचुरीज तक बनाए रखता है। दे कैन ऑल्सो बी फाउंड इन लिटरेचर आर्ट म्यूजिक एंड मूवीज टू। मतलब आपका प्यार आर्ट में भी ढूंढ सकते हैं और बहुत सारी चीजों में ढूंढ सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं आपको किसी इंसान से ही प्यार हो। रियल लाइफ में देखा जाए तो प्यार जो है कई फॉर्म्स में हो सकता है, जैसे एक्सिलरेटिंग रश फॉर अ न्यू रोमांस टू द डीप एंड एंड्योरिंग बॉन्ड फॉर अ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप। ऐसे प्यार को ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होता है। एक बड़ी अच्छी कविता है इसी से रिलेटेड जो याया भूतवाला ने लिखी है, जो कि मैं आपको सुनाऊंगा पर इन जबरदस्त गानों के बाद। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ इस रोमांटिक शाम में हमारे शो बी रिलैक्स में, ओनली ऑन वेणु ध्वनि 90.4 KLE कनसू।

0: ಇದುವರೆಗೂ ಕೇಳಿದ್ರಿ ವಾರ್ತೆಗಳನ್ನ ಆಕಾಶವಾಣಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ.
1: दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर वेणु ध्वनि 90.4 KLE कनसू पर. तो कविता कुछ इस प्रकार की है, इसे लिखा है याया भूतवाला ने, पर आप लोग इससे बहुत ही ज्यादा रिलेट करेंगे. तो देखिए, पहली नजर में अगर तुमने उसे देख लिया और उसने तुम्हें और इस लव एट फर्स्ट साइट को तुम मोहब्बत कह रहे हो तो हो सकता है तुम गलत हो. क्योंकि ये यार देखिए, पहली नजर में तो हमें एंटिक चीजें भी पसंद आ जाती है, पर हम उसे घर में रखते हैं सिर्फ दिखाने के लिए या सजावट के लिए, बस क्योंकि देर रात तक तुम दोनों ढेर सारी बातें करते हो और इसे तुम मोहब्बत समझते हो तो हो सकता है तुम गलत हो. क्योंकि यार अकेलेपन के मारे तो दो अनजान मुसाफिर भी एक दूसरे से बात कर ही लेते हैं. और अगर किसी लड़की को देखकर वो तुम्हारा हाथ पकड़ लेती है और किसी लड़के को देखकर तुम उसका, और इस क्यूट जेलेसी को तुम मोहब्बत कहते हो तो शायद हो सकता है तुम गलत हो. क्योंकि यार परिंदों को पकड़ा जाता है उन्हें पिंजरों में कैद करने के लिए, आजाद करने के लिए नहीं, बस क्योंकि अब तुम दोनों एक दूसरे की बातें समझ पा रहे हो और इसे तुम मोहब्बत कहते हो सकता है तुम गलत हो. क्योंकि याद रखो, दो भूखे भिखारी भी एक दूसरे की भूख समझ सकते हैं पर मिटा नहीं सकते. अरे अगर तुम एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन हर महीने कर रहे हो और इसे तुम मोहब्बत समझते हो तो हो सकता है मेरे दोस्त तुम गलत हो. क्योंकि दास्ताने इश्क को बयां करने के लिए साल का कोई भी नंबर नहीं चाहिए होता. अरे बस क्योंकि तुम उसकी इंस्टा स्टोरीज का हिस्सा बन गए हो और वो तुम्हारी स्नैपचैट स्टोरीज का हिस्सा बन चुकी है और इसे तुम मोहब्बत कह रहे हो तो शायद एक बार फिर आप गलत हो. क्योंकि फिल्टर्स के साथ मोहब्बत को कहीं सेव नहीं किया जाता, उसे बस उसी लम्हे में जिया जाता है और महसूस किया जाता है. लेकिन अगर जिस्मों में उलझने से पहले तुम उसकी जुल्फों में उलझना चाहते हो और अगर वो बेखौफ अपना बचपना तुम्हारे सामने जाया कर देती है और तुम अपने सारे राज उसे बता देते हो, उसके सामने खोल देते हो और उसने भी अपने सारे डर का जिक्र तुम्हारे सामने कर दिया है, अगर उसका हर एक आंसू सिर्फ तुम्हारी ही कमीज पर बहता हो और तुम्हारी हर मुस्कान की वजह सिर्फ उसकी नादानियां हो, तो शायद नहीं यही प्यार है. और इसे अगर ये तुम्हें मिल चुका है तो इसे पकड़ लो, जकड़ लो, गले लगा लो और मौका मिले तो बस ये कहते रहो कि तुम इससे कितना प्यार करते हो. क्योंकि ऐसी मोहब्बत को मिलने में सालों लग जाते हैं और एक जिंदगी का एक काफी लंबा अरसा बहुत जल्दी जल्दी गुजर जाता है. उम्मीद है आपको हमारा शो पसंद आया होगा. वैसे ही आपको ये कविता पसंद आई होगी तो जाइए आप भी एंजॉय कीजिए इस हसीन शाम को अपने लव्ड वंस के साथ और सुनते रहिए हमारा शो बी रिलैक्स ओनली ऑन वेणु ध्वनि 90.4 KLE कनसू आरजे आयुष के साथ. मिलेंगे जल्द, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट रोमांटिक इवनिंग अहेड. सी यू, बाय बाय.

0: नमस्कार, आप सुन रहे वेणुधोनी 90.4 एफएम केएलई कनसू। आज के इस विशेष प्रोग्राम में मनीष आपका स्वागत करती है। आज है ईद मिलाद, इसी के अवसर पे आज हम सुनेंगे क्रांति के मशाल वाहक पैगंबर हजरत मोहम्मद, इनके बारे में। और ये जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में है शाहिद मेमन जी, जो जमात इस्लामी हिंद कर्नाटका के सदस्य और राज्य सलाहकार परिषद है। तो चलिए सुनते इस विशेष प्रोग्राम को। आप सुनते रहे वेणुधोनी 90.4 एफएम केएलई कनसू।
1: पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्मदिन के शुभ अवसर पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 1450 वर्ष पहले पैगंबर इस दुनिया में आए, ईश्वर के आखिरी दूत बनकर, सारे इंसानों के मार्गदर्शक बनकर। सारी मानव जाति पर आपके बड़े उपकार और एहसान है। पवित्र कुरान के माध्यम से आपने सारी दुनिया को एक ईश्वर एक मानवता का संदेश दिया। पवित्र कुरान ईश्वर का भेजा हुआ वो संदेश है, जिसके द्वारा पैगंबर मोहम्मद ने मानव जीवन में एक ऐसी क्रांति लाई जिसका उदाहरण संपूर्ण मानव इतिहास में नहीं मिलता। पैगंबर की लाई हुई क्रांति एक ईश्वर की उपासना, उसके आगे समर्पित होना और ये एहसास और ये चेतना कि एक दिन हम सबको अपने प्रभु के आगे अपने कर्मों का हिसाब देना है, इस पर आधारित थी। इसकी शुरुआत व्यक्ति को भीतर से बदलने से हुई और बदले हुए व्यक्ति के माध्यम से इस क्रांति ने पूरे समाज को बदल दिया। ये क्रांति नफरत और बदले की भावना पर आधारित नहीं थी, बल्कि सत्य और न्याय, दया और करुणा, क्षमा और त्याग और मानव गरिमा पर खड़ी हुई थी। इतिहास इस बात का साक्षी है कि हर युग में और हर सभ्यता में जो शासक वर्ग होता था, जिनके हाथों में शासन और सत्ता था, जो धनवान और जमींदार लोग थे और धर्म अधिकारी थे, इनका आपस में गठजोड़ बना हुआ था। अंधविश्वास, अंधश्रद्धा को धार्मिक मान्यता दी गई थी, ऊंच नीच और जाति परंपरा को धर्म का रूप दिया गया था, रीति रिवाज और कर्म कांड तक धर्म सीमित होकर रह गया था, अन्याय, अत्याचार और भेदभाव एक आम बात थी और एक आम इंसान जैसे गुलाम बनाकर रख दिया गया था। ऐसा ही कुछ हालात थे जिसमें पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक क्रांतिकारी संदेश दिया। अल्लाह के सिवा कोई और ईश्वर नहीं है, वो अकेला इस जगत का मालिक, शासक और सृष्टिकर्ता है। ये सरल किंतु गहरी घोषणा रखने वाला संदेश था जिसने इतिहास को बदल दिया। इसने स्पष्ट कर दिया कि कोई राजा या शासक कितना ही बड़ा क्यों न हो, पूज्य के लायक नहीं है। कोई जाति या वर्ग दूसरे से श्रेष्ठ नहीं है। कोई इंसान कितना ही महान क्यों न हो, पूजा का योग्य नहीं है। सारे इंसान ईश्वर के आगे सम्मान है। इस घोषणा ने शोषण और अत्याचार की बुनियादों को हिला दिया, क्योंकि जो इंसान सृष्टिकर्ता के आगे झुकता है ना, वही वास्तव में उसकी सृष्टि के गुलामी से मुक्त हो जाता है। पैगंबर की लाई हुई ये क्रांति केवल शिक्षाओं और सिद्धांतों तक सीमित नहीं थी। पैगंबर मोहम्मद ने 23 वर्ष के छोटे से समय में एक नया समाज, एक नई सभ्यता, एक नई संस्कृति, एक नई दुनिया का निर्माण किया। पैगंबर ने जो क्रांति लाई उसने मानव जीवन के हर क्षेत्र को बदल दिया। आध्यात्मिकता और नैतिकता से लेकर परिवार का जीवन, सामाजिक पद्धति, कानून, अर्थव्यवस्था, शासन, सत्ता और न्याय, सब कुछ बदल दिया। देखते ही देखते सत्य और न्याय की स्थापना हुई, मानव की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति हुई, दया और करुणा का चलन हुआ, प्रेम और भाईचारा पनपा और फूला, मानव सम्मानता, अमन और शांति का वातावरण बना, मानव जीवन में जैसे बहार आई। आज मैं आपके सामने औरत के, नारी जाति के संबंधित जो पैगंबर की शिक्षा है, उसकी कुछ झलकियां रखना चाहूँगा। विशेष रूप से आज के संदर्भ में जब नारी जाति पर जुल्म और अत्याचार हो रहा है, चाहे वो एप्स्टीन फाइल्स का कांड हो, मी टू मूवमेंट हो, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस के रिपोर्ट्स हो, या फिर $100 बिलियन की पोर्नोग्राफी इंडस्ट्री हो, पैगंबर की शिक्षा बड़ी महत्वपूर्ण है। 1400 वर्ष पहले जबकि हर जगह महिलाओं को गरिमा, सुरक्षा और मूलभूत अधिकारों से वंचित रख दिया गया था, पैगंबर मोहम्मद ने एक ऐसी नैतिक और सामाजिक क्रांति लाई जिसने 7वीं शताब्दी में महिलाओं की स्थिति को कुछ ऐसे बदल दिया जिसकी हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते। पैगंबर मोहम्मद ने कहा, ईश्वर की दृष्टि में पुरुष और स्त्री दोनों समान हैं। अच्छे कर्मों का बदला दोनों को मिलेगा। आदर और सम्मान लिंग, जाति, धन दौलत के आधार पर नहीं बल्कि सदाचार और अच्छे चरित्र पर निर्भर है। महिलाएं केवल माँ, पत्नी और बेटियां ही नहीं हैं, ये परिवार, समाज और राष्ट्र की उन्नति में सम्मान की भागीदार हैं और योगदान देने वाली हैं। पुरुष और स्त्री को एक दूसरे से कॉम्पीट करना नहीं है बल्कि कॉम्प्लीमेंट करना है और मिलजुल कर मानवता के कल्याण और प्रगति के लिए अपनी अपनी भूमिका निभाना है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, धन्य है वो घर जिस घर में बेटी पैदा होती है। ईश्वर की दया और करुणा उस पूरे परिवार पर होती है। पैगंबर ने कहा, वो पिता जो अपनी बेटी को जान से नहीं मारता, उसे जीने का अधिकार देता है, उसका पालन पोषण करता है, उसी तरह जिस तरह से लड़के का करता है, अच्छी शिक्षा देता है, उसका विवाह करवाता है, तो फिर हम दोनों स्वर्ग में संग संग रहेंगे। पैगंबर ने कहा, लड़की का विवाह उस समय तक नहीं हो सकता जब तक लड़की स्वयं उस रिश्ते को स्वीकार न कर ले। विवाह के लिए लड़की की अनुमति शर्त है। पैगंबर ने औरत को खुला का अधिकार दिया, मतलब ये कि अगर कोई पति इम्पोर्टेंट है, नामर्द है या फिर अपनी पत्नी पर जुल्म और अत्याचार कर रहा है तो पत्नी को यह हक है कि वो अपने पत्नी से अलग हो जाए। पैगंबर ने विधवा को अपनी मर्जी से दोबारा शादी करने का हक दिया। पैगंबर ने कहा, औरत पर रोटी रोजी कमाना, घर का खर्चा चलाना इसकी जिम्मेदारी नहीं है, ये जिम्मेदारी तो मर्द की होती है। औरत अपनी कमाई की खुद मालिक है और अपनी मर्जी से खर्च करने का अधिकार रखती है। पैगंबर ने औरत को अपने पति के, अपने संतान के और अपने माता पिता की संपत्ति में हिस्सा दिया, राइट ऑफ इनहेरिटेंस दिया। लड़की वाले जो लड़के को डाउरी देते हैं, पैगंबर ने उसको पाप घोषित किया और उल्टा लड़की को यह हक दिया कि वो अपने होने वाले पति से मेहर ले, धन ले। मेहर के बिना निकाह असंभव है। जो व्यक्ति किसी औरत का बलात्कार करे, उसकी इज्जत लूटे, पैगंबर ने कुरान की शिक्षा के अनुसार उसे मौत की सजा का आदेश दिया। पैगंबर ने महिलाओं को बात करने का अधिकार दिया, स्वतंत्रता दी, सत्ता के सामने भी सच बोलने का हक दिया। उमर फारूक रदियल्ला ताला अन्हो, जो इस्लाम के दूसरे शासक और खलीफा थे, बड़े शक्तिशाली थे, उन्होंने मेहर की जो अमाउंट थी उसको सीमित करने का प्रस्ताव रखा, तो एक महिला ने खड़े होकर उस प्रस्ताव को चैलेंज किया और अपना दृष्टिकोण रखा। उमर फारूक को अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्होंने तुरंत अपना प्रस्ताव वापस लिया और उस महिला से कहा कि माँ, जब तक तुझ जैसी महिलाएं इस कौम में जिंदा रहेगी, मानवता का कल्याण होता रहेगा। पैगंबर ने यह भविष्यवाणी की थी कि एक समय ऐसा आएगा जब एक महिला अकेली सोने से भरी थैली लेकर बिना किसी भय के साथ यात्रा कर सकेगी। ये उस आदर्श समाज की तस्वीर थी जहां सुरक्षा, गरिमा और स्वतंत्रता इतनी मजबूती से स्थापित होगी कि महिला किसी डर के बिना स्वतंत्र होकर चल फिर सकेगी। इतिहास इस बात का साक्षी है कि वास्तविकता में ऐसा समाज बना जिसका विजन पैगंबर अपने पास रखते थे और जिसके लिए उन्होंने संघर्ष किया था। पैगंबर ने कहा कि देखो, तुम में सबसे अच्छा इंसान वो है जिसका स्वभाव अपनी पत्नी से अच्छा हो। पैगंबर ने कहा, माँ के चरणों के नीचे स्वर्ग है, यानी माँ की सेवा करके ही स्वर्ग प्राप्त हो सकती है। पैगंबर ने इस दुनिया से जाते जाते भी यही उपदेश दिया कि देखो, औरत के साथ, नारी जाति के साथ अच्छा स्वभाव करना, कल कयामत में खुदा तुमको उनके बारे में पूछेगा। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षाएं हमें याद दिलाती हैं कि महिला शोषण की वस्तु या उपयोग करके त्याग दे वाली वस्तु नहीं है, बल्कि वे गरिमा, अधिकार और सम्मान के लायक इंसान हैं, और जो लोग इन अधिकारों का उल्लंघन करते हैं उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। सच बात तो यह है कि पैगंबर ने नारी जाति को सुरक्षा दी, प्रतिष्ठा और गरिमा दी, समाज और सोसाइटी में ऊंचा और महत्वपूर्ण स्थान दिया। आज जो हमारी समस्याएं हैं, चाहे वो धोखा, चोरी, भ्रष्टाचार, ذات پات اور اونچ نیچ کے جھگڑے ہو، امیری اور غریبی کا بڑھتا ہوا فاصلہ ہو، یا پھر پریاورن کا سنکٹ ہو، ان سمسیاؤں کا سمادھان پیغمبر کی شکشا میں ملتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نشپکش ہو کر پیغمبر کے جیون، ان کا سندیش، ان کی شکشا دھیان کریں، تاکہ ہم اپنے جیون میں اس کو گرہن کر سکیں۔ تھینک یو۔
0: یہ تھا آج کا وشیش پروگرام جو آپ کیلی ویڑو دھونی 90.4 ایف ایم پہ سن رہے تھے۔ ہمارے ساتھ تھے شاہد میمن جی، جو جماعت اسلامی ہند کرناٹکا کے سدسیہ راجیہ سلاحکار پریشد ہے۔ پیغمبر حضرت محمد جی کے بارے میں ہم نے سنا، جو ایک کرانتی کے مشال واہک تھے۔ کیسا تھا آج کا ایپیسوڈ ضرور بتائیے، نمبر ہے 9019904904۔ یہ ہے کیلی ویڑو دھونی 90.4 ایف ایم کی پرستوتی۔ نمسکار۔

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेनुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन। एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

धोनी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेड़ोथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन। एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने के बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

बदलते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेड़ोथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चले सुनते प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने के बोल है, मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

ओनली 90.4 के LE कनसोबे आप ट्यून है। यादों के बारा हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

गाते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेड़ोथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चले सुनते प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

धुनी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेड़ थोड़ी 90.4 KLE कलसुम और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की बारात में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है, मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

दे रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज़ में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है, इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

दलते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों के भारत में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों के भारत में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों के बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

90.4 के LE कनसूबे आप ट्यूने यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

दे रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणु थोड़ी 90.4 KLE कलसो और यादों के बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों के बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

चलते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है वेणु थोड़ी 90.4 KLE कलसुम और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

90.4 KLE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

दे रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेरुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चले सुनते प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने के बोल है, मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

रंगधुनी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों के बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों के बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की बारात में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने के बोल है, मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।